ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और

0: सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए करते हैं प्रभु की स्तुति कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

श्रोताओं, ईश्वर की दी हुई आंतरिक शक्ति को महसूस करना और अपने भीतर की शांति को समझना हमें मानसिक और आध्यात्मिक

ईश्वर से मन से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं और कठिनाइयों को ईश्वर के सामने रखने का साहस दिखाएं। यह साहस हमें ईश्वर की कृपा से अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और उनका सामना करने की प्रेरणा देता है।

ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम होती हैं, भले ही वे हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के विपरीत हों। ईश्वर पर विश्वास रखें कि वह आपके जीवन के हर हिस्से को सही दिशा में ले जा रहा है।

ईश्वर हर समय हर जगह उपस्थित है। हमें बस अपने मन को खोलना है ताकि हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकें।

अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:37 हो चुके हैं। लीजिए आप सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम मौका विवरण, यानी कि कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, सुबह अबे अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे 6:40 पर श्री रामचरित मानस कान, 6:50 पर खेती में आज, और सवेरे 8:30 पर नमस्कार उदयपुर आप सुनेंगे, 9:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम, और 10 बजे शीर्षक गीत होगा। सुबह 11 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे, 11:30 पर सुगम संगीत, 12 बजे फिल्म संगीत, और 1:05 पर आप सुनेंगे सहेलियारी पाड़ी कार्यक्रम। 1:45 पर विकास चर्चा होगी, 2:30 पर कृषि जगत, और शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम का वक्त रहेगा। 6:05 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे, और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर से, 7 बजे आप सुनेंगे खेती और घर प्रोग्राम, रात 9:30 पर अखिल भारतीय संस्कृति कार्यक्रम आप सुनेंगे, रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, और तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। यह आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए सदाबहार नगमे। आज का ये प्रोग्राम आरडी बर्मन साहब को और नितिन मुकेश को समर्पित, आज दोनों का जन्मदिन है। तो शुरुआत नितिन मुकेश के इस गीत से।

खेती में आज हुनो वाला हंगले किसान भाई बहनों ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून रो महीनो चल रो है, नानी टाइम पे आपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है अंडे बारे में बात करा। और देखो खरीफ फसला में बीजोपचार की बात करा तो देखो फसला में बीज उपचार करी नापी 8-10% उत्पादन जो है वो बढ़ाई सका सा। फसला री उत्पादकता में बढ़ोतरी करवा वाते आवश्यक है की आपी फसला में कीड़ा बीमारिया रो प्रकोप नहीं वेवे अंडे वाते सीड ड्रेसिंग ड्रम द्वारा आपी बीजोपचार करा सा। बीजोपचार लाभ री जटे बात करा तो देखो बीजोपचार करो शीघ्र अंकुरण वेवे, अंकुरण क्षमता में भी वृद्धि वेवे, पौधों जो है वो उत्तम वेवे, अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक उपज आपने प्राप्त वेवे, दलहनी फसलारी ग्रंथियां में भी वृद्धि वेवे और बीजोपचारों विपरीत परिस्थितियां में भी स्वस्थ और एक सार विकास वेवे सा। अंडे अलावा देखो बीजोपचार करवाऊ स्वस्थ और पूर्ण विकसित जड़ा जो है पौधारी भी विकसित वेवे। अंडे अलावा फसलारी बीज और भूमि जनित रोगों भी सुरक्षा वेवे। अंडे अलावा अपनी जा भी लागत है वहीं पर मुनाफो भी आपने ज्यादा प्राप्त वेवे। फसलारी उत्पादकता में बढ़ोतरी के कारण फसला में कीड़ा बीमारिया रो प्रकोप कम वेवे। अणि उद्देश्य बोयू पहली आपने 100% बीजोपचार करनो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सा। बीजोपचार करता समय आपने FIR क्रम रो अवश्य आपने ध्यान रखनो है। बीजा ने आपने फफूंद नाशियों पचे कीट नाशियों और सबो लास्ट में आपने कल्चर जन्ने आप संवर्ध भी कहा भणियों आप उपचारित कर सका सा। और खरीफ फसलों ने आपी बुआयों पहली अगर आपी बीजोपचार करांगा तो आपने ज्यादा लाभ भी प्राप्त वेगा सा। और देखो अबे आपने अणी मिना में कशा कृषि संबंधी कार्य करना है वंडी जानकारी दा। और सबों पहली फसला रे उत्पादन री बात करा तो देखो खरीफ फसला में खास तौर पे दलहनी फसला में कातरे रो प्रकोप वेवे सा। कीट री लट वाली अवस्था ही फसला ने नुकसान पहुंचावे। अणी कीट पतंगा ने नष्ट करवा रे वाते प्रकाश पास रो उपयोग आपी कर सका सा। अंडे लिए मानसून वर्षा शुरू हुए खेतरी मेड़ा पे और चरागाह पर आपने गैस री लालटेन या बल्ब जलाना है और अंडे नीचे 5% मिट्टी रो तेल पानी में मिलाइन कणी बड़ा बर्तन में रख देनो है सा। प्रकाश पर कातरा रे पतंगा आकर्षित वेगा और नीचे मिट्टी रे तेल में मिलिन पानी में गिरिन मर जाएगा सा। कातरे री छोटी अवस्था री लटा फसल में दिखता ही आपने क्यूनोलोफोस 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दरू फसल पर भुरकाव करनो है सा। कपास में सफेद मक्खी ग्रे विविल जेसिड और थ्रिप्स रे नियंत्रण रहवाते कीड़ा दिखाई देवा पर आपने डाई मिथियोड 30 EC दवा जा है 1 लीटर प्रति हेक्टरी दरू गोल बनाई छिड़काव करनो है सा। क्षारीय और लवणीय मिट्टी में बोवऊ पहली बाजरा रे बीज ने 1% सोडियम सल्फेट रे गोल में 4 घंटा तक आपने भिगोइन साफ पानी में धोइन छाया में हुकावर बाद बीज ने कवक नाशियों उपचारित करीन पचे बोवनो है सा। अशो उपचारित बीज खारी मिट्टी में बोवऊ अंकुरन ज्यादा वेगा सा। सिंचित मूंगफली री बुआई रो उपयुक्त समय जून माह रे प्रथम सप्ताह रे दूसरे सप्ताह तक वेवे सा। मिट्टी री जांच रे आधार पर अंतिम जुताई पहली प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलानो है। मूंगफली रे खेत में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम फास्फेट और 15 किलो नत्रजन 130 किलोग्राम DAP या 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया बोयू पहली नायले रे उरिन देनो है सा। फास्फेट तत्व की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट SSP द्वारा क्यों जानो ज्यादा फायदेमंद रहे सा। ज्वार में तना मक्खी कीट नियंत्रण रे वाते मानसून री पहली वर्षा रे व्यवहारे 1 सप्ताह रे अंदर ही बुआई आपने करनी है। देर बोई जावे वाली फसल में कार्बोफ्यूरोन 3% कण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टरी दरू उम्रों में डालिन बुआई करनी है सा। अबे आपी बागवानी री बात करा तो देखो नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम वाते प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीग्राम प्रति 15 लीटर पानी रे घोल बनाइन छिड़काव करनो चावे सा। बेर में काट छाट करनी है जणू कही है कि नया प्रोहोर में अधिक संख्या में फूल और फल आएगा सा। काट्या थका स्थान पर फफूंद नाशी बोर्डेक्स मिश्रण रो लेप करनो चावे सा। लींबू वर्गीय पौधा में पर्ण खनक व सिट्रिला कीड़ारी रोकथाम रे वाते एसीफेंट 75 AP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या दाई मिठियोर 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दरू

गोल बनाइन छिड़काव करनो चावे सा। नींबू में कैंकर रोग रे बचाव रे वाते बॉडी मिश्रण या स्ट्रेपोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 4 से 5 लीटर पानी रे घोल बनाइन 20 से 25 दिन रे अंतर में छिड़काव करनो चावे सा। छायादार व शोभकारी वृक्षा ने लगावा रे वाते फलदार वृक्षा री तरह रेखांकन करीन 5 गड्ढा खुदाई करवारो कार्य करनो है सा। आंवला और बोरेक्स रो 0.4% व जिंक सल्फेट रो 0.2% रो गोल बनाइन छिड़काव अनि टाइम पे कर सका सा। अब आप ही सब्जियां री बात करा तो देखो भिंडी री खरीफ फसल री बुआई जून माह में अपने करनी है। भिंडी री अपराजिता शक्ति अर्का अभय पूसा मखमली पूसा सावनी अर्का अनामिका किस्मारो 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर री दर बुआई करनो है सा। कुष्मांड कुल री सब्जियां में कद्दू बीटल एवं हाड़ा बीटल री रोकथाम रे वाते डाई मिथियोड 30 EC/1 लीटर प्रति हेक्टर री दर छिड़काव करनो चावे सा। फूल गोभी री अगेती किस्म अल्ली कुआरी रो 650 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर री दर नर्सरी तैयार करनी है। बीजा री बुआई उठी थकी क्यारी में करनी है और थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम दर बीज ने उपचारित करनो चावे सा। टमाटर री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो खेत में 75 सेंटीमीटर री दूरी पर रोपण करनो चावे। संकर किस्मा में गोबर री खाद 300 से 350 क्विंटल नत्रजन 90 किलो फास्फोरस 120 किलो और पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टर री दरू देनो है सा। रिंगणा री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो रोपण 60 सेंटीमीटर री दूरी पर अपने करनो है। खेत री तैयारी रे टेम पे गोबर री खाद 120 से 150 क्विंटल नत्रजन 40 किलोग्राम फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दरू देनो है सा। मर्चा री तैयार की दी थकी पौधरो 45 x 45 सेंटीमीटर री दूरी पर रोपण करनो चावे। अंतिम जुताई रे टेम पे पहली अपने गोबर री खाद 150 से 180 क्विंटल नत्रजन 35 किलो फास्फोरस 48 किलो और पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टर री दरू देनो है सा। कुकर बीट्स बैंगन और टमाटर में माइट्स री रोकथाम रे वाते इथियोन 1 लीटर प्रति हेक्टर री दरू छिड़काव करनो है सा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में फल मक्खी री रोकथाम रे वाते मेलाथियन 50 EC या डाई मिथियोड 30 EC/1 मिलीलीटर दवारो प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टर री दरू छिड़काव करनो है सा। अणु हरा तेला या मोयलारो नियंत्रण भी वही जागा सा। मूली री पूसा चेत की किस्म री बुआई करनी है। अंडी 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दरू बीज री आवश्यकता अपने पड़ेगा सा। अब आप ही फूला रे उत्पादन री बात करा तो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा बालसम जीनिया सूरजमुखी कॉक्स कॉम्ब आदि री नर्सरी एनी टाइम पे अपने तैयार करनी है। तैयार नर्सरी में जा रहे हूँ नियमित सिंचाई करते रहनो है और खरपतवार भी अपने निकालते रहनो है सा। क्यारिया में लगी थकी गुलदाउदी रा सकर्स ने अलग अपने लगावना है। गेंदा री वर्षाकालीन फसल री पौधरो खेत में रोपण करनो है। कतारारे बीच में 60 से 90 सेंटीमीटर और पौधारे बीच में 45 से 60 सेंटीमीटर ही अपने दूरी रखनी है। रजनी गंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलारी संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावारे वाते GA3 जिब्रेलिक एसिड 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी रे घोल में वणेन अपने परणीय छिड़काव करनो है। अब आप ही मुर्गी पालन री बात करा तो मुर्गियां ने गर्मियों बचावे वाते दीवार पर घास री टाटी बांधिन पानी रे छिड़िरे आप ही मारी सका जणियो ठंडक बनी रहेगा सा। दोपहर टाइम में पानी में ग्लूकोज विटामिन और लूण वचवारे वाते इलेक्ट्रोलाइट्स आप ही डाली सका सा। किसान भाई बहनों अबे आप ही चारा फसला री बात करा तो चारा रे वाते ज्वार लोबिया और बहु कटाई वाली चरी री बुआई एनी टाइम पे आप ही कर सका। वर्षा ने व्यवहारी दशा पे पले वो आप ही देन बुआई भी कर सका सा। लोबिया रे वाते 35 से 40 किलोग्राम ज्वार रे वाते 40 से 45 किलोग्राम और बहु काटन वाली चरी रे वाते 20 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर री अपने आवश्यकता पड़ेगा सा। चारा री गुणवत्ता और उपज बढ़ावा रे वाते ज्वार रे बीज रे साथ साथ आपी 10 से 12 किलोग्राम लोबिया रो बीज भी प्रति हेक्टर आपी मिले सका सा। या तो देखो किसान भाई बहनों अणी टाइम पे आपने कशा कशी संबंधी कार्य करना है वनडे बारे में जानकारी दी सा। अब आपने कार्यक्रम रो टाइम खत्म भी रो है तो किसान भाई बहनों आज्ञा दो सा राम राम सा।

चलिए प्यार की बात की और अब करते हैं दोस्ती की बात। नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में खुदगर्ज़ का ये गीत अब आपके रेडियो सेट पर।

चलिए नितिन मुकेश को देते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, और अब बारी है आर डी बर्मन साहब की। इन्होंने बहुत से संगीत कंपोज किए हैं, साथ ही साथ पंचम दा के नाम से ये पहचाने गए, और अगर इनकी हम बात करें तो बहुत से गाने उन्होंने अपनी आवाज़ में भी गाए। तो हम

0: ओ श्रोताओं, अभिलाषा फिल्म का अब गीत आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और संगीत वही आरटी बर्मन का।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना।

0: दिमाग चार्ज कर अपना।
1: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
0: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
1: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
0: बुद्धू सुधर जा।
1: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
1: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोताओं, आर डी बर्मन साहब ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर है। वो ऐसा ही एक गीत है मेरे जीवन साथी का, जो अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। किशोर कुमार की इसमें आवाज़ है।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

तू मैके मत जाइयो पुकार फिल्म का एक गीत था, और इसके साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेर के 7:45 और ये वक्त है सुगम संगीत का। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में गैर फिल्मी गीत। ये है कार्यक्रम का आगाज़।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर होगी मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार

0: विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते

0: हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में

0: के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार

0: पर 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties.

0: आज का रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और इन्हीं कोशिशों के साथ आज का अंक लेकर मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकर,
1: और मैं हूं संतोष।
0: तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और अब हम बात करें तो आज है कल्चर पॉप सैटरडे, और आज हम क्या क्या करने वाले हैं?
1: आज हम वीकेंड ओपनर में हमारे श्रोताओं को प्रमुख स्थानीय खबरें बताएंगे, T20 वर्ल्ड कप अपडेट देंगे और साथ ही फीफा वर्ल्ड कप अपडेट भी बताने वाले हैं।
0: साथ ही साथ लोक परंपरा के तहत हम बात करेंगे आज मानसून से जुड़ी मेवाड़ की परंपरा पर।
1: और एंटरटेनमेंट लॉज में यानी मनोरंजन की जानकारी में हम बात करने वाले हैं थिएटर से जुड़ी युवा पीढ़ी के बारे में।
0: सूक्ष्म लघु मध्यम दिवस पर भी बात करेंगे, और ये हम बात करेंगे अवेयरनेस के तहत। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: चलिए कहीं ना जाना क्योंकि हम हैं आपके साथ। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में, और शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। तो आज शहरी जल योजना के नगर उपखंड पंचम के अंतर्गत मानसी वाकल परियोजना जाडोल स्थित जीएसएस पर विद्युत लाइन मरम्मत का कार्य चल रहा है, और इसके चलते सुबह 8 से शाम 4 बजे तक शटडाउन रहेगा। यानी कि इस दौरान जहाँ भी पेयजल आपूर्ति होती है वो नहीं हो पाएगी।
1: बिल्कुल। और एक खबर ये है भगवती जी कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं को नशा मुक्त होकर अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। इसी उद्देश्य से 50,000 से अधिक पाठशालाओं में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं और विभिन्न संगठन इस दिशा में कार्यरत हैं।
0: और एक खबर ये है कि शहर में इस वीकेंड 2 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं आज आयोजित हो रही है। राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेट और प्री पीजी परीक्षा, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर तक रहेगा। और अगर हम

0: बात करें तो उदयपुर ज़िले में 16 केंद्रों पर 6,528 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 28 जून यानी कि रविवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा भी होने जा रही है।
1: बिल्कुल, ये जो भर्ती परीक्षाएं होती है या प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो आयोजन होता है, इस समय थोड़ी शहर में असुविधा भी हो जाती है, ट्रैफिक संबंधित दिक्कत हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस समय का हमें उपयोग नहीं करना है या फिर हमें कहीं जाना हो तो ऐसे रूट का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि हमें भी असुविधा ना हो।
0: और हमारे जो है प्रतियोगी वो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाए।
1: बिल्कुल, और जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया है कि परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले उनको पहुंचना अनिवार्य है।
0: एक गीत हो जाए।
1: बिल्कुल।

0: चलिए अब बात करते हैं मैचों की। तो अगर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को 3-1 से मात देकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, और ये ग्रुप स्टेज में 3 मैचों में डच टीम की दूसरी जीत रही, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। और साथ ही साथ ग्रुप ई के मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने कराकाओ को 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया। 3 बार की अफ्रीकी चैंपियन आइवरी कोस्ट ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। और
1: आज के मुकाबले हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे के साथ सऊदी अरब का मैच सुबह 5:30 बजे से जारी है। उरुग्वे स्पेन के बीच सुबह 5:30 बजे से मैच अभी चल रहा है, जिसके नतीजे अभी आए नहीं हैं। और मिस्र और ईरान के बीच सुबह 8:30 से, यानी अब से थोड़ी ही देर पहले मैच शुरू हो चुका है। पनामा और इंग्लैंड के बीच रात 2:30 पर और क्रोएशिया और गाना के बीच रात 2:30 से मुकाबले होने हैं।
0: भारतीय टाइम के अनुसार, है ना।
1: बिल्कुल। और अब बात करें क्रिकेट मैच की। T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया। 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तेज रही, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे और 18.5 ओवर में 148 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पूर्व में आयरिश टीम और भारत के बीच हुए 12 मैचों में से पहली बार आयरलैंड जीता है। और तो और, इस मैच की विशेष बात ये रही भगवती जी कि इसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अकेले संघर्ष करते हुए महज 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 20 गेंदों में 50 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
0: हॉकी की बात करें तो भारत ने FIH प्रो लीग में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7-1 से करारी शिकस्त दी है, और ये पिछले 3 दिनों में भारत की पाक पर लगातार दूसरी जीत रही। तो बिल्कुल इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं हमारी टीम को भी। और अब एक गीत।
1: बिल्कुल।

0: जीने की जहाँ तक बात आती है तो बारिशें याद आ जाती है, क्योंकि पानी के बिना सब सूना होता है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और जब मानसून का इंतज़ार होता है तो सभी की नज़र आसमान की ओर ठहर जाती है। मानसून के स्वागत में जहां मेघ मल्हार जैसे राग गाए जाते हैं, वैसे ही मेवाड़ में भी मानसून को लेकर के कई परंपराएं प्रचलित हैं। जैसे वर्षा के बादल उमंग और प्रेम का संचार करते हैं, वैसे ही चारों तरफ फैली हुई हरियाली को देखकर सभी के मन में आनंद उत्पन्न होता है। यहाँ मेवाड़ में मानसून सिर्फ मौसम का ही नहीं, एक उत्सव का नाम है, जिसमें परंपराएं हैं, आस्था है और खुशियों का संगम है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मेवाड़ में तो हमेशा से परंपराएं रही है, तभी तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया था। और मूल रूप से एक खगोलीय केंद्र के रूप में परिकल्पित इस महल को बाद में एक शाही विश्राम स्थल के रूप में भी उपयोग किया गया। और जहाँ तक शाही परिवार मानसून के बादलों और अरावली की हरियाली का यहाँ पर लगातार आनंद लेता आया है, तो ये भी हमारी परंपरा में ही शामिल है।
1: बिल्कुल, मेवाड़ में मानसून का स्वागत बड़े ही खास अंदाज में किया जाता है भगवती। हरियाली अमावस्या पर मेले आयोजित होते हैं, रंग बिरंगी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, वहीं लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। नेचर को सपोर्ट करने का जिनका भाव होता है, वैसे सभी का होना चाहिए, सभी लोग वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं। और हमारे उदयपुर के ऑक्सीजन हब यानी गुलाब बाग में प्रति सोमवार को सखिया सोमवार का मेला भी आयोजित होता है। तीज त्योहारों की भरमार रहती है। सिंजारा व सावणी लेकर ससुराल पक्ष से कन्याओं और नवविवाहिताओं के लिए लहरिया लाए जाते हैं, हाथों पर मेहंदी सजाना, सखियों के संग

0: झूला झूलना, ये सभी आनंद मानसून में ही हमें देखने को मिलते हैं। खासकर हरे रंग के परिधान या लहरियां पहनी हुई हमारी जो सखियां हैं वो हमें सभी जगह दिखाई देती हैं। चौमासे की इस बेला में विभिन्न समाजों व संगठनों में उजड़नी, प्रसादियां व भ्रमण के सामूहिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सभी संगी साथी साथ साथ मिलकर इंद्र देवता को रिझाने के लिए सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, जिससे प्रेम व सौहार्द बढ़ता है।
1: ये अगर अपने सामूहिक भोज की बात कही है तो ये जो होता है वो होता है गांव से बाहर, यानी कि आप प्रकृति की गोद में जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप दाल बाटी चूरमा बनाते हैं और साथ ही साथ परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अपने गांव के अन्य साथियों के साथ आप जब एक साथ उससे जुड़ते हैं तो आप मानसून का पूरा आनंद उठा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो लगभग मैनारिया समाज की 300 साल पुरानी एक परंपरा रही है और अच्छी बारिश के लिए ये परंपरा जो है निभाई जाती है और इसके तहत हर एक व्यक्ति ऐसे एक निश्चित राशि ली जाती है और उसको एकत्र करने के बाद अनुष्ठान और मन्नत भी मांगी जाती है। साथ ही साथ इंद्रदेव को जो प्रसन्न करने के लिए बहुत सी प्रसादियों का आयोजन हमेशा से होता आया है। और जब बारिश होती है ना तो हमारे यहाँ की एक और परंपरा है और वो परंपरा ये है कि हम जाकर जल स्रोतों पर जाते हैं और ग्रामीण एक साथ ढोल बजाते हुए जाते हैं और समंदर मंथन या समंदर का पूजन हम करते हैं। तो ये आपको एक आभास देता है जल संरक्षण का।
0: बिल्कुल, और जब हम मानसून की बात करें और गवरी नृत्य को भूल जाएं, ये तो हो नहीं सकता। मानसून के समय पर ही प्राचीन संस्कृति और रंगमंचीय परंपरा के स्वरूप को गवरी नृत्य के रूप में देखा जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर निरंतर सवा महीने तक गवरी नृत्य का आयोजन होता है। आस्था, सामाजिक परंपरा और सामाजिक गतिविधियों से मानसून का हमेशा से नाता रहा है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो सावन सोमवार के व्रत, मनसापूर्ण महादेव के व्रत करके शिव भक्त भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। वहीं संत महात्मा चातुर्मास का पालन करते हैं। जैव विविधता में मानसून काल में तेजी से परिवर्तन आते हैं, उसको देखकर सभी के कल्याण का विचार कर चातुर्मास का नियम भी रखा जाता है और रथ यात्रा, शोभा यात्राओं का आयोजन इन दिनों में देखा जाता है। जल जुलनी एकादशी हो, रथ यात्रा हो, चाहे भड़ुली नवमी हो, श्राद्ध पक्ष हो, सभी तिथि विशेष पर सभी अपने रीति रिवाज के और परंपराओं के अनुसार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और खान पान की तो बात ही क्या।
1: और आपने बात कही है तो एक सांझी परंपरा, सांझी सजा जो संध्या सजाने की जो परंपरा है
0: घर के प्रवेश द्वार पर जो गोबर से सजाई जाती है विभिन्न आकृतियाँ,
1: बहुत ही सुंदर, और ये जो है आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें खान पान की तो आप जैसे ही मानसून में प्रवेश करते हैं तो आपका खान पान पूरा बदल चुका होता है, यानी कि आपको जो रबड़ी के मालपुए का स्वाद जो मानसून में आएगा वो कभी नहीं आएगा और आपको रबड़ी के मालपुए भी लगभग मानसून में ही मिलेंगे।
0: बिल्कुल, गर्म गर्म खाने की जो क्रेविंग होती है ना वो इस समय बहुत प्रबल हो जाती है।
1: और घेवर, घेवर जो है वो आपको मानसून के दिनों में मिलेंगी है। साथ ही साथ रबड़ी अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी मानसून में मिलेगी। और सावन के झूलों की, कजली हरी, कजली तीज और हरियाली तीज की तो आपने बात कही है, यानी कि पूरा का पूरा मानसून पैकेज है जो कि मेवाड़ में बसता है। और जब आप उसका आनंद लेते हैं यानी कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर तरह का जो है आपको लगेगा कि हम मेवाड़ में हैं।
0: तो यानी कि सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब
1: इंतजार है बारिश का।

श्रोताओं नमस्कार, उदयपुर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो रहा है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो सुनते हैं जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वे रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे

0: रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीकी तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक

खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में चार चार वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद

0: संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में चार चार वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले छह जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायुसेना ने नई दिल्ली में अपनी एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: और श्रोताओं फिर नमस्कार, उदयपुर में स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
2: मैं हूं संतोष।
1: तो एक बार फिर करते हैं आपका स्वागत इस गीत से।

0: बिल्कुल, गली में आज चांद निकला। और अब हम बात करते हैं थिएटर की, है ना,
1: बिल्कुल
0: मनोरंजन जानकारी की तरफ हम लौटते हैं। और थिएटर की अगर हम बात करें तो आज की युवा पीढ़ी जो है थिएटर और रंगमंच की ओर से तेज़ी से आकर्षित हो रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि इसमें रचनात्मकता व्यक्त करने का मौका मिलता है, आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, और डिजिटल स्क्रीन से दूर जब वास्तविक दुनिया में आप अपनी पहचान बनाते हैं तो आपको एक सशक्त मंच भी यहाँ मिलता है।
1: बिल्कुल, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर युवा अपने विचार खुलकर तो रख पाते हैं, साथ ही उनमें संवेदनशीलता, अनुशासन और सामूहिक कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी बढ़ावा मिलता है। थिएटर से जुड़ने वाले युवाओं में कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी सुधार आता है और करंट अपडेट का भी विकास होता है, यानी कि वो आधुनिकता में क्या चल रहा है उससे भी अपडेटेड रहते हैं।
0: सही कहा। और देखिए, थिएटर कलाकारों को अपने विचारों और भावनाओं को सीधे दर्शकों तक जो है उनकी पहुंच बनती है। और उदयपुर की युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ जो है मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में भी अनेक युवा जो है रंगमंच को अपनी प्रतिभा निखारने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने और समाज से जुड़ने का प्रभावी माध्यम मान रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ बहुत से ऐसे निजी संस्थान या जो वेस्ट जॉन कल्चर सेंटर है वहाँ, और ऐसी कई कार्यशालाएं चलती है जहाँ पर आपको नाटक सिखाए जाते हैं और आपको अभिव्यक्ति देने का तरीका सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको, आप जब नाटक करते हैं ना या इस तरफ जब आप बढ़ते हैं थिएटर की तरफ, तो आपको वो किरदार जीना होता
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: उस किरदार में खुद को उतारना होता है और कहीं ना कहीं उसको करते करते हमारे अंदर भी उस किरदार के भाव भी अंदर भीतर उतरने लगते हैं। थिएटर जो होता है वो रंगमंच का जो कलाकार होता है वो व्यक्ति नाटकों की रचना, निर्देशन या मंचन में भी शामिल होता है। किसी भी कहानी को अपने अभिनय से जीवंत कर देने का, जो दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ने का जो भाव होता है, वो भाव एक थिएटर कलाकार ही सबके भीतर डाल पाता है।
0: जब आप किसी रंगमंच पे उतरते हैं या आप बूढ़े का रोल कर रहे हैं, गरीब का रोल कर रहे हैं, अमीर का रोल कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को जीने का जो आपका विश्वास बनता है या यूं कहें कि उन चीज़ों को जीने का जो मौका मिलता है उसको, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है।
1: बिल्कुल, अभिनय में निर्देशन, लेखन, मंच और वेशभूषा का भी बहुत महत्व होता है। जैसा आपका आकार प्रकार

0: होता है वो भी आपके कैरेक्टर को है वो डिस्प्ले करता है।
1: और बात करें, हम कई जो स्कीमें चल रही है, कई सारी जागरूकताएं जो होती है, चाहे आप महिला सशक्तिकरण को लेके ले लें, शिक्षा को लेके ले लें, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता को ले लें, तो इन विषयों पर जब आप कोई प्रस्तुतियां देते हैं तो वो दर्शकों तक सीधी पहुंच बनाती है, और जब सीधी पहुंच बनाती है तो और भी दर्शक जो होते हैं वो भी इस थिएटर को चुनते हैं कि यार
0: बिल्कुल
1: ये बहुत ही अच्छा पेशा है, और यही वजह है कि युवा पीढ़ी इस ओर अब जो है इंटरेस्ट दिखा रही है।
0: बिल्कुल, भारत में कई ऐसे मंच हैं जो युवाओं को थिएटर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तनाव से दूर रखकर एक सकारात्मक सोच हमें देता है। और हमारे उदयपुर जैसे सांस्कृतिक शहर में जो है, यहाँ पर तो थिएटर का बहुत ज़्यादा प्रेमी भी रहते हैं।
1: बहुत से हमारे ऐसे कलाकार रहे हैं जो आज बॉलीवुड तक काम कर रहे हैं।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव में अब बात करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस की। और ये आज मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य है रोजगार सृजन, नवाचार, आर्थिक विकास, स्थानीय उद्योगों में MSME क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करना।
1: बिल्कुल, जो रोजगार के क्षेत्र हैं उसमें देश की अर्थव्यवस्था कैसे संबल मिले, देश की अर्थव्यवस्था को, उसको देखकर इस दिवस को हम मना रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम ऐसे संगठन होते हैं जो आम तौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते, फिर भी वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र 2/3 से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए जिम्मेदार होता है।
0: इसके बावजूद आप देखिए कि भारत में हर यह क्षेत्र जो है करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और विनिर्माण, सेवा, निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी MSME का विशेष योगदान है।
1: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME क्षेत्र वैश्विक स्तर पर लगभग 90% व्यवसायों, 60-70% रोजगारों और 50% GDP का प्रतिनिधित्व करता है।
0: इसका भूमिका की बात करें तो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित देना और नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना जो है इनकी भूमिका माना गया है।
1: वैसे इस दिन विशेष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2013 में एक प्रस्ताव पारित किया, इस दिवस को आधिकारिक तौर पर घोषित किया, जिसे 27 जून को सूक्ष्म, लघु, मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित कर मनाया जाने लगा। और इस वर्ष की थीम की हम बात करें तो इस वर्ष की थीम है नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजनाएं भी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।
0: बिल्कुल, ये बात हमने की इस दिवस की और अब हमारे वक्त की घड़ियां इशारा कर रही है प्रोग्राम से अलविदा कहने के लिए। तो आज मैं था आपका दोस्त भगवती लक्षकर
1: और मैं थी संतोष।
0: अब एक गीत के साथ छोड़े जाते हैं, दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में गैर फिल्मी गीत।

ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता। तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

अनगी तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

दीवाना किया तेरी यादों ने, दीवाना एल्बम से हम आपको सुना रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। सुनिए कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत।

तो श्रोताओं, हूँ आप सुन रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में गैर फिल्मी गीत प्रोग्राम चल रहा है सुगम संगीत, और आइए है कार्यक्रम का अंतिम गीत, आवाज़ एक बार फिर सोनू निगम की।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक, इस गीत को आप सुनकर पहचानिए।

0: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो।
1: बिल्कुल साथी फिल्म से आज जो है हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्मी गीत। तो ये है कार्यक्रम का पहला गीत मिस्टर बेचारा से।

बिल्कुल, साथी जुदा कब होते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। एक सच्चा जीवन साथी वह है जो आपके सुख दुख में साथ निभाए और हर परिस्थिति में आपका हौसला बढ़ाए। जीवन साथी का चुनाव करते समय विचारों की समानता, आपसी सम्मान और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं।

शिक्षक से गीत और हम साथी की बात करें तो साथी के साथ लक्ष्य और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का मेल खाना एक मजबूत नींव भी बनाता है।

रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना और सच्चे भाव से साथ देना सबसे ज़रूरी है। एक दूसरे को सुनना, भावनाओं को समझना, समस्याओं का समाधान करना है और सही जीवन साथी का इंतज़ार करते समय धैर्य रखना और सही समय पर तलाशना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सुख के सब साथी दुख में न कोई, सच में यही बात होती है जो ज़माने से सीखनी होती है और आपको अनुभव भी करनी होती है। चलिए आज शीर्षक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साथ ही शीर्षक से।

साथियों, आज आपने सुना साथी शीर्षक से गीत, और यह है कार्यक्रम का अंतिम फिल्म गीत। और अब इसके साथ ही दीजिए अनुमति आपके दोस्त भगवती लक्षकार को। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं हर्षित वयार का सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे हैं ओम प्रकाश कुमावत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हमने आपके रेडियो सेट पर पहुंचाया हर्षित कुमार वयार का सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे थे ओम प्रकाश कुमावत। अगला कार्यक्रम लेकर फिर से लौटेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11:31 हो चुके हैं और ये समय है सुगम संगीत का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सुगम संगीत के सफर पर। पहली गजल चंदन दास की आवाज में आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं।

0: प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को हम ऐसे ही आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर,
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
9: RBI कहता है
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से सुनने वाले सभी श्रोताओं का सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और चंदन दास की आवाज़ में हमने आपको इससे पहले गज़ल सुनवाई थी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली गज़ल आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक बार फिर से चंदन दास के ही आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं हम।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

परवरिश फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का आगाज हमने किया। दिलकश आवाजें थी आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र और अमित कुमार की। फिल्म थी परवरिश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत चुपके चुपके फिल्म से आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल स्वर में।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है,

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और सिलसिला फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। दिलकश आवाज़ थी लता मंगेशकर और अमिता बच्चन की। इस गीत को संगीत से सजाया था शिव हरि ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में, हाथ की सफाई फिल्म से।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और एक और गीत आपके रेडियो सेट पर बाजार फिल्म से दिलकश आवाज भूपिंदर की।

बाजार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, दिलकश आवाज थी भूपिंदर की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को हम ऐसे ही आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।

छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं मासूम फिल्म से, दिलकश आवाज अनूप घोषाल की।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। और ब्रेक में जाने से पहले आपको जो गीत हमने सुनवाया था वो था फिल्म रफू चक्कर से। दिलकश आवाजें थी कंचन और शैलेंद्र की। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं, येशुदास की आवाज में फिल्म सुनैना से।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में वारिस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं लता मंगेशकर की दिलकश आवाज में फिल्म आसपास से। और इस गीत के साथ ही दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को, फिल्म संगीत का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होंगे 1:45 पर।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान किए। उन्होंने रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए गए। इस उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का पानी अगले 3-4 महीनों में जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृत 4 अतिरिक्त जलाशयों में से फलसू जलाशय में पानी भरने की शुरुआत होने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के बाद अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए 29,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से जारी वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अब तक किसी भी एक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोग को 20,24,000 आवेदन मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं और 316 साक्षात्कार आयोजित कर विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए 2,538 युवाओं का चयन किया था। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विभिन्न जिलों में अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिन के इस अभियान के दौरान पहले दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज झुंझुनू और जैसलमेर में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। झुंझुनू के CMHO डॉ छोटेलाल गुर्जर ने शहीद पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के लिए 1,551 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में भी गड़ीसर चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेशल्स विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमीनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारी महिलाओं के लिए उनका अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम सरजू भैसा, राम राम।
1: राम राम अनीता भैसा, राम राम।
0: सहेलियारी वाड़ी कार्यक्रम सुनवा वाली संगली बेना ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो भैसा, कार्यक्रम रो टेम यो और आप अपनी संगली बेना रे साथ कार्यक्रम में आया आसा। और यदि कार्यक्रम में आवा तो अपनी बेना रे वास्ते घनी हारी जानकारी लेना आसा कि आखिर में गाँव में कई चल रो आजकल, या कसा कसा पर्यटन स्थल है जटे की आप आनी टेम पे घूमवा जा सका हाँ, या पचन ने आप कह सका कि मतलब जो महिला है वे कणी तरह आगे बढ़ सके है, वे आत्मनिर्भर कणी तरह बन सके है, ऐसी बहुत सारी जानकारी आप अपनी वास्ते लेना वासा। और हाथी हाथी आना मनोरंजन कर वास्ते बढ़िया राजस्थानी लोकगीत भी सुनावा सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो सा कि आज आप सहेलियारी वाड़ी कार्यक्रम में विचार वाली बात में लेने आया हाँ कि महिला री कानूनी जागरूकता में बदल तो जो समाज है बनी रे बारे में, क्योंकि देखो एक यदि एक महिला जागरूक वेगा तो न सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज जो है दन पे दन आगे बढ़तो रहेगा। क्योंकि आज रानी बदलता भारत और वैश्विक समाज में इन्हें पूरी तरीकों सटीक बैठे हैं, कणी भी समाज री प्रगति रो पैमानो अणी वातु आक्यो जाई सके है कि वटारी जो महिला है वणा कतरा अधिकार वणा ने मिलिया है और वणा रे प्रति वणारी कतरी सोच जो है वा सचेत है सा।
0: बिल्कुल सा।
1: तो अणी वास्ते जो है कि महिला री जो कानूनी जागरूकता है बड़ी रे महीने समाज जो है दन पे दन बदल रही है सा।
0: बिल्कुल सा। अगर आप बात करा कि जे कानूनी जागरूकता है तो वह क्यों है या क्यों जरूरी है अन्य बारे में भी आप अपनी बहना ने बतावा सा कि देखो सा, आप देखी रहा कि सदियों अपनी जो बहना है वे सामाजिक और पारिवारिक जो बंधन है वणी में बांधी थकी रखे है सा। अन्नो सबो बड़ो कारण यो कि अपना अधिकार प्रति वणा ने अज्ञानता, यानी कि वणा ने पतो ही नहीं कि अपना कई कई ऐसा अधिकार है जना अधिकारों आप आगे बढ़ सका हाँ। यदि ती एक महिला ने यह नहीं पतो वेगा कि कानून वणा हाथे कई गलत वेरो है या कई गलत नहीं वेरो है, या जदा तक कि वणा खिलाफ आवाज नहीं उठे सके, तो कानूनी जो साक्षरता है वह महिला ने पीड़ित हूँ सशक्त वणा असलो हौसलो देवे है सा। अणी वास्ते वणा ने ज्ञान वेणो बहुत ही जरूरी है सा।
1: बिल्कुल हाँ जी, बात कह रहा हूँ सा। देखो समाज ने बदलवा वाला जतरा भी मुख्य रूपों जो कानूनी अधिकार है वे भी अपनी बेना ने आप बताई दा।
0: बिल्कुल
1: सर। आज जो है भारत रे महीने ऐसा कई कानून है जो महिला ने समाज में एक मजबूत स्थिति दी दी है। घरेलू हिंसाओं महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो अनिरे महीने घर री चार दीवारी रे महीने वे इंडा वेवा वाला जतरा भी शारीरिक मानसिक आर्थिक जतरा भी शोषण हा बनारे खिलाफ महिला जो है एक मजबूत ढाल दीदी ही। क्योंकि कामकाजी महिला रो यौन उत्पीड़न अधिनियम रो अणी कानून ने कार्यस्थल ने महिला रे वास्ते सुरक्षित बनायो जणी ने वणारी आर्थिक भागीदारी भी दन पे दन बढ़ी है सा।
0: बिल्कुल सा। और अन्य लापा बात करा तो देखो समान जितना भी पारिश्रमिक अधिनियम है वणी में ने यो सुनिश्चित करे है कि एक ही काम रे वास्ते महिला और पुरुष बराबर वेतन मिल सके है, यानी कि वे कई भी काम करे तो वणारो जो मानदेय है या वणारो जो वेतन है वो बराबर वे सके है सा। और अन्य अलावा संपत्ति में समान अधिकार की बात करा तो बेटिया ने पिता री संपत्ति में बेटा रे बराबर कानूनी अधिकार दे समाज यानी सोच ने बदलो ताकि बेटिया सिर्फ पर ही नहीं वे सके वे आपणी भी वे सके है सा।
1: बिल्कुल हाँ जी, बात कह रहा हूँ सा। और देखो जो जागरूकता समाज में आई रहा बदलाव री आप बात करा तो जिस तर महिला कानूना रे प्रति जागरूक वेरी है समाज रो तानो बानो तेजू बदल रियो है।
0: बिल्कुल।
1: लारे लारे अपराधा रे खिलाफ आवाज भी उठाई रहा है। पहला लोक लाज और डर रे कारण महिला चुप वे जाती है, लेकिन अभी आजकल कई वेगियों को खुल न थाना में जावा लागी, अदालत रा दरवाजा खटखटाई रही है। तो अणी तरीका वे अपराधा रे खिलाफ आवाज उठाई ने अपने खुद री सुरक्षा खुद कर रही है।
0: बिल्कुल सा। और हाथे हाथे अगर आप आर्थिक आत्मनिर्भरता री बात करा तो सुरक्षित माहौल और समान अधिकार री बदलता आज अणी महिला में कॉपरेटर सेना खेल बिजनेस हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है, यानी कि हर क्षेत्र में आप देखा तो अपनी जो बेटियां है बहना है वे आगे

0: बड़ी रही है सा। और
1: अंडे
0: अलावा देखो भाई साहब बात करा कि रूढ़ीवादी सोच पर रही चोटरी अगर अपा बात करा तो समाजवाद सोच जो महिला ने केवल घरेलू कामकाज तक सीमित माने हैं अब बदल रही है, क्योंकि पुरुषों की जो मानसिकता है वणी में भी बदलाव आ रो है और महिला ने एक सहकर्मी और बराबर साथ रूप में देखो जा रो है सा।
1: देखो सर चुनौतियाँ री आगे री राह री बात भी आप करा कि कानून जो है वो वन जानो काफी नहीं है।
0: हाँ सर,
1: वर्णो जमीन पे लागू वेणो आखिरी पायदान पे खड़ी महिला एक पहुंचनो जरूरी है। आज भी आपा देखा कि ग्रामीण और दूर दराज इलाका में शिक्षा री कमी रे कारण

0: स्तर है स्कूली शिक्षा में बुनियादी कानून शामिल करनो ताकि कई वेगा की बेटियां जो है वे बचपन अपने अधिकार ने जानी सकेगा।
1: बिल्कुल सर।
0: दूसरी बात डिजिटल जागरूकता री, तो सोशल मीडिया मोबाइल रे जरिए कानूनी सहायता एप्स है, हेल्पलाइन है, जिस तरह के वहाँ की 1091 रो प्रचार करनो अणी तरीका हूँ। और पचे महिला री जो तीसरी बात आवे की पुरुषारी भागीदारी, तो समाज जदी बदलेगा जदी पुरुष जो है महिला रे अणी कानूनी अधिकार रो सम्मान करनो हीकेगा सा।
1: बिल्कुल सही बात की दिशा, यानी कि समाज ने पूरी तरह बदलनो है तो अपने ना तीन स्तर पे काम करनो जरूरी वेगा सा। और देखो सा, महिला ने कानूनी जागरूकता कहीं समाज पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि यो एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की बुनियादी जरूरत है। यदि एक जागरूक महिला अपने हक के लिए खड़ी वेगा तो वह आवा वाली जितनी भी पीढ़िया है मंडे वास्ते सुरक्षित और बेहतर कल रो रास्तों साफ करेगा। और सही मायने में बात करा तो सजग नारी है जब बदलते समाज से हूँ सब मजबूत नीम भी वेवे है ऐसा अणि वास्ते बहना ने हमेशा सशक्त बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और अपना अधिकार ने जानना है और शिक्षा पूरी करनी और आगे बढ़ना है ऐसा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जो आगे बढ़वा रही बात आवे अनिता भाई सा।
1: हाँ सर।
0: तो देखो सा अत्रहारा कार्यक्रम लेने आवा अत्री बड़े बड़े जानकारी लेने आवा तो देखो अपने बहना ने जो है मनोरंजन की दुनिया में ले जानो भी जरूरी है सा।
1: बिल्कुल सही सा।
0: तो आपके वो तो ले चला मनोरंजन की दुनिया में और हुनामा बनाने एक राजस्थानी गीत।
1: हाँ सर।

0: अनीता भाई सा
1: हाँ सा
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सर। गीत रे लारे लारे देखो आपा अपनी बेना ने संदेश भी हुनाया सा।
1: बिल्कुल
0: और
1: सा
0: देखो सा कि जो आपा बात करी रहा हा और अनी सहेलियारी वाली कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता तका जानकारी अबे आपा अपनी जत्री भी बहना है वना ने या करावा कि ऑनलाइन शिकायत और सहायता पोर्टल है
1: हाँ
0: वणी रे बारे में। क्योंकि देखो ऑनलाइन शिकायत और सहायता पोर्टल रे आपा बात करी रहा हा तो यो एक डिजिटल मंच है
1: बिल्कुल सा
0: जणी रे जरिए नागरिक कणी भी सरकारी विभाग निजी कंपनी संस्था रे खिलाफ अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सके है और वो हाउ तरीकों अपनी सहायता प्राप्त कर सके सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो भाई साहब मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करें देखो बिना कणी दफ्तर में चक्कर काटिया घरे बैठा लोगों की जो समस्या है वनडी पारदर्शी और समयबद्ध निवारण करना अंडो मुख्य उद्देश्य वे ऐसा कि आप घरे बैठा भी अगर आपने शिकायत करनी है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सका हाँ सा और सहायता भी हाथ हाथे ले सका हाँ सा।
0: बिल्कुल
1: और देखो
0: सा
1: सा भाई साहब भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई बेहतरीन पोर्टल चलाया जा रहा है वनडे माध्यमों आप यो काम कर सका हाँ सा। तो सब पहला बात करा कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यो भारत सरकार और मुख्य पोर्टल है जटे आप कहीं भी केंद्रीय मंत्रालय या पची विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई सका हाँ सा। और दूसरो राजस्थान संपर्क की अगर आप बात करा तो विशेष रूप राजस्थान का जितना भी निवासी है वनर वास्ते राज्य सरकार और एक एकीकृत पोर्टल है जटे पंचायत स्तर ले राज्य स्तर तक की सरकारी सेवा है जी जुड़ी तकी है और अटे भी अगर आपने कहीं भी प्रकार की कोई शिकायत है तो देखो आप अटे शिकायत दर्ज कराई सका हाँ सा।
0: बिल्कुल सा देखो राष्ट्रीय जो उपभोक्ता हेल्पलाइन है तो
1: हाँ
0: अगर कणी कंपनी या दुकानदार ने आपने लारे धोखाधड़ी की दी है तो खराब सामान भी दीदो है तो आप उपभोक्ता मामला में अणी पोर्टल पे शिकायत करी सक्रिया हो और ऑनलाइन फ्रॉड सोशल मीडिया हैंगिंग और कणी भी तरीकारो जो डिजिटल अपराध है रिपोर्ट रे माध्यमों या रिपोर्ट रे वास्ते तो यो गृह मंत्रालय रो आधिकारिक पोर्टल है तो अणी रे महीने आप शिकायत कर सक्रिया हो। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल रा घना हारा लाभ भी है कि अणी में समय और पैसा री बचत वेगा आपने अणी सरकारी कार्यालय अधिकारी रा चक्कर काटवारी जरूरत नहीं पड़ेगा और शिकायत री जो ट्रैकिंग है वो शिकायत दर्ज वेता ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वे आप

0: ने मिल जाएगा अणी महीने आप सब कुछ देख सक रहा हो और आपरी फाइल जो है वणी पे कई कार्रवाई भी है वा भी आप भणी सक रहा हो सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो अंडेलावा जवाबदेही और पारदर्शिता की अगर आप बात करा तो देखो ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप शिकायत करा तो देखो अंडो यो भी लाभ है कि अधिकारी लिए एक निश्चित समय सीमा तय वे वे झंडे पीतर उन्होंने अपने जो भी समस्या है उनको समाधान करनो भी वे वे है सा। और देखो आप देखा तो देखो 24x7 उपलब्धता की अगर बात करा तो आप दिन या रात कणी भी टाइम पे आप आने में शिकायत कर सका, यानी कि 24 घंटा आप जाने भी टाइम अपने यहाँ शिकायत कर लागी रही तो आप आने भी शिकायत कर सका हाँ सा। और देखो सर जी भाई सा यो काम आप कहीं तरह करा यह जानकारी भी आपने बहनों देता कि अंडे वास्ते अपने पंजीकरण करना पड़े सा, सब पहला संबंधित पोर्टल पर जाए मोबाइल नंबर है पचे ईमेल जरिए आप अकाउंट बने देवा तो बटे आप पंजीकरण अपना वही जाएगा सा। और अपने विभाग रो चयन करनो और समस्या रो विवरण लिखनो, अगर कोई सहायक दस्तावेज है अपने पास रसीद है फोटो है तो वे भी अपने बटे हाथे हाथे अपलोड कर देना चाहे ताकि कई वेगा कि यू काम अपने पंजीकरण करने वास्ते आसान भी जाएगा सा।
0: बिल्कुल सा, और कार्रवाई और समाधान री आपा बात करा अनीता भाई सा तो अपने भेना ने आपा बतावा कि शिकायत संबंधित अधिकारी ने ट्रांसफर कर दी जावे है और समाधान वेवा पे अपनी जो SMS या ईमेल रे जरिए सूचित करियो जावे तो आपा जो है अणी तरीको आपा हर काम कर सक रहे हैं। और आपा कणी विशेष विभाग समस्या जिस तरह कृषि बिजली पानी बैंकिंग रे वास्ते पोर्टल की जानकारी भी आप दे सक रहे हैं। तो देखो साहब बहुत ही बढ़िया सी जो जानकारी थी वहाँ पर अपने किसान बेना ने और घरेलू बेना ने सबने बताई सा। और अबे देखो सा आप केवो तो एक और राजस्थानी गीत होने वनारो मनोरंजन करावा सा।
1: हाँ सर।

0: तो सर जी वैसा ही बढ़िया गीत आप अपने बेना ने सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा।
1: हाँ सा।
0: और बातचीत करा कि जैविक जो उत्पाद है वनडो विपणन करी तरह वैसे के है सा, यानी कि जैविक उत्पाद विपणन अगर आप बात करा तो ही तो मतलब ये हुए कि जैविक तरीका जो उगाया थका या बनाया गया थका जितना भी अनाज है, सब्जियां हैं, फल है, मसाला है, या पचे बात करा तो डेयरी उत्पाद है वना ने सही बाजार तक पहुंचाना और वना ने सही कीमत पर बेचना, ये वनडो विपणन रो मतलब है वैसा।
1: बिल्कुल सा। देखो अनिता भैसा आणी रे महीने सिर्फ सामान वेचणो ही नहीं आवे बल्कि ग्राहक जत्रा भी वेवे मणारो भरोसो दिलाणो भी शामिल वे और अणी में आपणो उत्पाद पूरी तरीके रसायन कीटनाशक मुक्त वे और जैविक उत्पाद विपणन ने जो आपा कही सका कि बहुत आसानी आपा समझी सका, जिस तरह आपा कही सका शुद्धता है, प्रमाणन है, जैविक विपणन नु सब पहलो जरूरी नियम है भरोसो। ग्राहक जैविक उत्पाद रे वास्ते ज्यादा पैसा देवाने भी जदी तैयार वही जावे, जदी शुद्धता री गारंटी मिले, कुछ एक आपरो व्यवहार भी शामिल वे वणी रे महीने, अन्य वास्ते सरकार या अधिकृत संस्था जो है वणा ने प्रमाण पत्र जिसर आपा कही सका कि भारत रे महीने नरई हारा लोग है तो वणारो लेणो देणो वेवे, ये लोगारा ब्रांड री साख बढ़ावे है, सही बाजार और ग्राहकारी पहचान करावे, हर कोई जैविक उत्पाद नहीं खरीदे क्योंकि वे सामान्य उत्पादन ने थोड़ा महंगा वेवे है और अणी वास्ते अणी में विपणन में सही ग्राहका ने चुनना बहुत जरूरी है सा।
0: बिल्कुल सा, सही बात की दिशा। और जिस तरह की आप बात करा तो स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक लोग वे वे इन्हें खरीदे सा, छोटा बच्चा रा माता पिता है वे भी अणा ने ले वे सा, और शहर में रहने वाला लोग है जो बेहतर जीवन शैली चाहे है वे अणा चीजा ने पसंद करे है जिन्हें आप कैसे कहा कि जैविक उत्पाद सा। और देखो अगर आप अपने पैकेजिंग या पचे बात करा तो देखो जैविक उत्पादन ने पैकेजिंग या पचे आकर्षण और पर्यावरण रे अनुकूल बनाना है तो देखो जूट रा थैला है, कागज रा डिब्बा है, असा वेना चाहे सा अणा में अगर आप पैक कर दांगा तो देखो उन्हारा जो आकर्षण है वो भी बढ़ेगा सा। और अगर आप ग्राहक ने ये बतावा कि ये उत्पाद कहीं मिट्टी में है या कहीं किसान कतरी मेहनत वण तको है और मैं रसायन उगा तको है तो लोग अपने उत्पाद में भावनात्मक रूप जुड़ी जाएगा सा, यानी कि आप कही सका कि उन्होंने सही तरीकों अगर आप

0: तो सर जी वैसा ये बढ़िया गीत आप अपनी बहना ने सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा और बात करा कि आजकल गांव में कई चल रहा है सा।
1: हाँ सा, तो देखो जटे आप अनिता वैसा गांव री बात करी रिया हो तो देखो अपनी बहना ने आप बतावा कि गांव रे महीने स्वच्छ भारत मिशन चल रही है सा। अणी रे तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्र में बनाया जावा वाला जितना भी घरेलू शौचालय जो है बनार ने इज्जत घर नाम दियो गयो है।
0: बिल्कुल सही बात
1: की
0: सा।
1: शौचालय ने इज्जत घर केवारे पाछे एक बहुत ही बड़ो गहरो सामाजिक संवेदनात्मक कारण है। तो वो है अणीरी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश हुई ही बटा बाद में केंद्र सरकार जो है पूरा देश में अपनावारो सुझाव दी दो और अणी पहलरा घना हारा मुख्य बिंदु भी है ऐसा।
0: बिल्कुल सर, देखो बात करा कि गरिमा और सम्मान नहीं तो देखो पहला गांव में क्षेत्र में शौचालय रजक केवल एक मल त्यागरी जगह रे रूप में देखो जाता हो सा। जानियो कि लोग अने घर में बनावर में कतरा था यदि इन अब इज्जत कर रहा नाम दीदो है सा तो अने सीधे तौर पर परिवार है विशेषकर महिला रे सम्मान सुरक्षा और गरिमा जुड़े तो को है सा और अने लोगों ने सोच में बड़ा बदलाव भी आयो है सा। और देखो महिला ने खुला में सोच रहे वास्ते सुबह अंधेरा में या पे रात में इंतजार करना पड़ता हो जानियो कही तो कि नीचे सुरक्षा है स्वास्थ्य है दो ही पर बुरा असर भी पड़ता हो सा। और घर में इज्जत कर बनो उन्होंने या सुविधा है जब मिल पाई है तो गणियों कही वेग्यो कि उन्होंने वास्ते एक आसान तरीका वेग्यो है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। सरकार द्वारा सहायता प्रोत्साहन राशि स्वच्छ भारत मिशन रे तहत ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय या इज्जत घर बनावारे वास्ते सरकार द्वारा 12,000 री वित्तीय सहायता प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि आर्थिक रूप कमजोर परिवार अणी ने आसानियों बनाई सके सा।
0: बिल्कुल सही बात करी सा। और देखो आप कहाँ तो इज्जत कर केवल ईट और सीमेंट उगण एक शौचालय नहीं है बल्कि आप बात करते हो ग्रामीण भारत में स्वच्छता स्वास्थ्य और महिला रे सम्मान ने समर्पित एक सामाजिक बदलाव रो प्रतीक है सा। देखो भाई सर तो यह तो आप बात होता है कि स्वच्छ भारत मिशन में यू इज्जत कर कही है अन्य बारा में सा। और अब आपको तो अपने बिना देखो राजस्थान लोग ही सुने दो सा।
1: हाँ सा,

0: तो सर जी भाई सा ये तो बढ़िया गीत सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा और आप अपनी बेना ने क्योंकि आप कार्यक्रम के माध्यम बतावा कणी कणी जो पर्यटन स्थल है वन्य बारे में भी आप जानकारी आप देवा हाँ सा
1: बिल्कुल तो, सा तो देखो आप बात करा खाटू श्याम जी तीर्थ धामरी
0: हाँ सा
1: तो खाटू श्याम जी राजस्थान रा सब प्रमुख आस्था रा केंद्र महीनू एक है। अगर आप खाटू श्याम तीर्थ यात्रा की योजना बनाई रहा हो तो अटेणी पावन स्थल आपारे आसपास रा प्रमुख पर्यटन स्थल री जानकारी दे दा सा कि अणी में खाटू श्याम जी रो मंदिर खाटू श्याम जी रो यो मुख्य मंदिर शिखर जिला रे खाटू गांव में स्थित है। अणी में कलयुगो सबू जागृत देव मान्या गया है। भक्त अणे हारे का सहारा और लखदातार रे नाम पुकारता रेवे है और अणी में रिंगस जो है वणी गांव रे महीने ये है खाटू गांव रे पास में और खाटू श्याम जी री भगवान री कृष्ण री परम भक्त बरबरीक रे रूप में है जना महाभारत युद्ध रे समय आपनो शीश दान कर दीदो हो सा।
0: बिल्कुल सा और गरंड मुख्य आकर्षण री बात करा तो देखो बाबा श्याम रो अत्यंत सुंदर और भव्य श्रृंगार श्याम कुंड जटे बाबा रो शीश प्रकट व्यू थो यो तोरण द्वार है सा। और यात्रा रो सही टेम री बात करा तो वैसे अटे साल भर भक्त ने ताता लगा लागे तो करे वैसा लेकिन फागुन मास में विशेष रूप अटे लक्ष्मी मेला रो सबसे बड़ो आकर्षण अणि में वेवे है सा। और अगर आसपास रा अगर आप मंदिर री बात करा धार्मिक स्थल री बात करा तो सालासर बाला जी मंदिर है जीण माता मंदिर है हर्षनाथ भैरव मंदिर है ये सारा मंदिर आसपास में है सा। तो देखो सा यह तो आप बात की थी कि खाटू श्याम जी री जो तीर्थ यात्रा है अणि में अगर आप जावा तो अतरा सारा धार्मिक स्थल है वटे आप जा सका हाँ और दर्शन भी कर सका हाँ सा। और देखो सर जो वैसा कार्यक्रम में आया हाँ बातचीत करवा तो बहुत सारो मन करें जानकारी देवारी बहुत सारी इच्छा वे लेकिन घड़ी आड़ी देखा तो अपने कार्यक्रम टाइम सा तो आप चला सा
1: राम राम सा।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म सूर्यवंशम से आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। इस सेगमेंट का ये पहला गीत एंजॉय कीजिए।

0: ताल फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, दिलकश आवाज़ थी सोनू निगम और अनुराधा श्री राम की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद फिर से सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गुलामी फिल्म से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस नगमे को।

गुलामी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश यारा दिलदारा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पोड़वाल के युगल स्वर में हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं। और इस गीत के साथ ही आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को दीजिए इजाजत और एंजॉय कीजिए इस आखिरी गीत को।

यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं और ये समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का जो योजना का विषय है वो है प्रसाद स्कीम। तो सुनते हैं विकास चर्चा।

प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की जानकारी हम आपको दे दें। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पूरे भारत में प्रमुख तीर्थ और आध्यात्मिक स्थलों का समग्र और सतत विकास करना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के लिए बेहतर सड़कें, स्वच्छता, पेयजल, वाईफाई, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करना है। इस योजना का तीसरा उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था में मजबूती लाना, स्थानीय कला, संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसकी जानकारी भी हम आपसे साझा करते हैं। 100% केंद्र पोषित इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास का 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। कार्यान्वयन इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। अन्य भागीदारी बेहतर रखरखाव के लिए इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया गया है। आप इस योजना के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और इसके तहत शामिल किए गए स्थलों की सूची पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर्यटन मंत्रालय पर देख सकते हैं। योजना के लाभार्थियों के लिए दिशा निर्देश माई स्कीम पर उपलब्ध है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र को सुन रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:15 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से बस थोड़ी ही देर में समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो ये सबसे

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका

0: से पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु

0: ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनीता भैसा, राम राम।
1: राम राम सरजू भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होणवा वाला हगले किसान भाई बहना ने आपनो राम राम सा। देखो सा कार्यक्रम रो टाइम वियो।
1: हाँ,
0: और कृषि जगत कार्यक्रम रे महीने आपा किसान री वात महीने घणी हारी वाता लेने आया।
1: हाँ सा,
0: तो आज देखो सा सब पहला आपा बातचीत करांगा कि फलों उद्योग में वर्षा ऋतु प्रबंधन जो है वणीरे बारे में। तो देखो वर्षा ऋतु बागवानी फल उद्योगारे वास्ते एक वरदान भी है, बड़ी चुनौती भी है सा। और अनीता भाई सा, अणी मौसम में झटे पौधा ने भरपूर पानी मिल

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो अनीता भाई सा,
3: हाँ सा,
2: देखो सा कि बहुत ही प्यारो सा राजस्थानी गीत हुनायो सा।
3: हाँ सा।
2: और देखो सा आप बातचीत करी रिया हाँ, फलो उद्यान में वर्कर ऋतु जो है वणीरो प्रबंधन जो है वे कणी तरीको आपने किसान ने करनो चावे तो वा बात करी रिया हाँ। तो वणी बात नहीं सापा जारी रखा कि देखो अणी तरीका रा काम जो आपा करा तो वणी में बहुत ध्यान रखवारी बात है कि आपने जल निकासी रो ध्यान रखनो है और वणी रे लारे लारे जो है रोग और कीट वणी रो प्रबंधन भी जरूरी है। तो देखो वटे आपा बात करा कि हवा में नमी गरम तापमान रे कारण अणी मौसम में बीमारियां तेजू फैलिया करे।
3: हाँ हाँ।
2: तो अणी रे वास्ते आपने कई करनो है कि किसान भाई लोगों ने करनो कि फफूंद नाशक रो छिड़काव जरूर कर लेनो चाहे। मानसून शुरू रेवा पहले आपने बारिश रे वच महीने आपने बेड़ा भी लगानी चाहे। अणी तरीको आपने कीट नियंत्रण करनो चाहे। तो अणी मौसम में फल मखीरो हमलो बहुत ज्यादा वेवे तो अणी वास्ते वंचाव रे वास्ते बगीचा में फेरोमेल ट्रोप जरूर लगाए सा।
3: बिल्कुल सा।

0: कीट प्रबंधन की आप बात कर ली थी, और अगर आप बात करा कि पोषण और खाद्य प्रबंधन रही, तो देखो आने वर्षा टाइम पे पानी रहते मिट्टी रहा जो पोषक तत्व है वे बेही जावे सा, आने वास्ते पौधा ने ताकत देना बहुत जरूरी है। तो टाइम टाइम पर अपने खाद रो जो प्रबंधन है वो भी करना चाहे सा, भारी वर्षा के दौरान कभी भी रासायनिक खाद नहीं देना चाहे सा, आने बात अपने ध्यान रखना क्योंकि वो भी बेही जाएगा सा। यदि रिमझिम बारिश वे रही हुए हल्की हल्की फवा रह रही हुए तो या पचे बारिश रुकी थकी हुए वहीं टाइम पर अपने कहीं पेड़ा रे फैला रही साबू थाला बनाई गोबरी सड़ी थकी खाद है वर्मी कंपोस्ट है या पचे अनुसंसित एन पी क्रा जे के वे ये भी आप पानी में दे सका सा। और अन्य अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर आप बात करा तो पत्ता में पीलापन रे रोकवार वास्ते अपने जिंक सल्फेट है फेरस सल्फेट है अंडो छिड़काव करना भी आने वास्ते बहुत ही फायदेमंद वे हैं सा।
1: बिल्कुल सानिता वैसा देखो अभी आ भात आवे है कटई छटई और कतरन री तो सूखी और बीमार टेनिया हटावनी चावे। मानसून ठीक पहला शुरुआती दौर में सूखी रोगग्रस्त और आपस में उलझी तकी जत्री भी टेनिया है वे काटी देनी। अणीरे महीने पौधारे महीने तकरी धूप है हवा पहुंचीती रेवे तो अणी में फंगस रो खतरो भी कम वेवे है।
0: हाँ
1: लारे लारे जटे कटिंग वाला हिस्सा जतरा भी है अनीता वैसा तो अणा ने सुरक्षा प्रदान करनो जटे की वे टेहनी काटी जावे वणी काट्या तका हिस्सा पे बोर्डा पेस्ट या फफूंद नाशक लेप जो है वने तुरंत लगाई देनो चावे ताकि कई वेवे की बटे जो संक्रमण है वो नहीं फैले है सा।
0: बिल्कुल सा। और अन्य अलावा देखो और बात रो ध्यान रखने की जितना भी नया पौधा है वनडी रोपाई के वास्ते भी आपने सही जो टेम है वो आपने फिक्स कर देना चाहे सा, क्योंकि अगर आप जो फलदार पौधा है अन्ना आप लगाना चाहिए रहा तो वर्षा ऋतु वास्ते सर्वोत्तम समय वे सा। तो अंडे वास्ते सबो पहला गड्ढा तैयार करना है आणि महीना में अपने कई करना है कि एक इंटू एक इंटू एक 18 मीटर का गड्ढा खोदी वड़ाने आपने तैयार करना है। खोदिया बाद वड़ाने के करना है धूप में खुला छोड़ देना है। पचाणी में ऊपरी जो मिट्टी है वड़ी में गोबरी खाद है सिंगल सुपर फॉस्फेट है ये मिले नड़ाने हाउतरों भरी देना चाहे सा। और रोपण रो ध्यान रखना जिस तरह भी वर्षा आई जावे जिस तरह भी आवाई वाली है जुलाई अगस्त में तो अपने नियमित बारिश चित्तान वेरी वे वणी दौरान अपने कई करना है कि अपना पौधा है वड़ाने अपने लगाई देना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और एक जरूरी सलाह आपा देवा अपने किसान भाई बहना ने कि वर्षा रा मौसम में बगीचा में खरपतवार बहुत ज्यादा तेजी बढ़वा लाग जा ये न सिर्फ पोषण तत्व चुरावे बल्कि कीड़ा ने भी छिपा वरी जगह दिया करे है तो अणी वास्ते समय समय पे निराई गुड़ाई करी लेनी है। बण्यू कही वेगा कि आपने खेत व्यवस्थित रहेगा कीड़ा मकोड़ा मरी जाएगा। और लेकिन ध्यान रखवारी यह बात है कि जड़ा पे चोट नहीं पहुंचे अणी वातरो ध्यान रखनो है। और जटे आपा देखा कि आम है अमरुद है नींबू है अनारे मानसून रे महीने प्रबंधन रे बारे में भी आपने पूरी जानकारी रख लेनी है सा।
0: बिल्कुल सा। तो सरजू भी सही है तो आप अपने किसान भाई ने जानकारी दी थी कि जो फलरा उद्योग है हमारा में वर्षा ऋतु पे अपने कई कई प्रबंधन करना चाहे सा। और अब एक को तो अपने किसान भाई ने एक बड़े राजस्थानी लोग सुने था सा।
1: हाँ सा।

0: तो अनीता भैसा
1: हाँ सा।
0: देखो सा, बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है आपा किसान भाई बहना ने हुनायो सा। और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और जानकारी करावा कि देखो मंडी में जो किसान भाई है
1: हाँ
0: बनारे वास्ते कई कई उपलब्ध सुविधा है, तो वनीरे बारे में जानकारी करावा सा।
1: बिल्कुल सर। देखो कृषि उपज मंडी अगर आप बात करा तो वहाँ में किसान ने अपनी फसल सही दाम पर बेचवार वास्ते मंडी प्रवास ने आसान बनाने वास्ते सरकार और मंडी जी समितियाँ हैं वनडे द्वारा कई महत्वपूर्ण सुविधा दी दी थकी है सा। तो वहीं सुविधा री आप बात करा हाँ सर। तो देखो सब पहला फसल बिक्री और पारदर्शी व्यापारी सुविधा की बात करा तो देखो राष्ट्रीय कृषि बाजार में आप देखा कि देश और राजस्थान की जो अधिकांश मंडियाँ हैं

0: मणि में ऑनलाइन ई नेम पोर्टल जुड़ी चुकी है। अणि में किसान अपनी उपज की जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है मंडे जरिए देश भर व्यापार ने बेच सके हैं सा, और अणि सही और प्रतिस्पर्धी दाम अणि आसानी मिल सके अपने किसान भाई ने सा।
1: बिल्कुल सा। और इलेक्ट्रिक टोल री बात जटे आपा करा अनिता भाईसा, और किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि वजन में कणी भी तरीका री गड़बड़ी ने रोकवा वास्ते आधुनिक प्रमाणिक और इलेक्ट्रॉनिक कांटो वेइंग स्केल री जनी बात कर रहे हैं आपा, तो वन्नी व्यवस्था वे खुली नीलामी रो मतलब है कि फसल ने ऊंचा दामा पे बेचवारे वास्ते व्यापारियों रे वच्चे खुली बोली या इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करवायो जावे सा।
0: बिल्कुल सा। और हाथ हाथी किसान ने रुकवा वाला जितना भी किसान में रुके है या वरना भोजन की व्यवस्था की अगर बात करा तो किसान कलेवा योजना जड़ी में कही कि मंडिया में फसल जो बेचवा आवा वाला जितना भी किसान है मंडे साथ आवा वाला जितना भी मददगार और बेहद रियायती दर पर आप बात करा तो शुद्ध गर्म और पौष्टिक भोजन जो थाली है वह भी वटे उपलब्ध कराई जावे सा, ताकि बाकी जितनी भी राशि मंडी समिति द्वारा सब्सिडी रूप में दीदी जावे ऐसा,
1: यानी
0: कि आप कह सका कि कम कम पैसा में उन्होंने शुद्ध भोजन भी उन्होंने किसान भाई ने मिल सके ऐसा।
1: हाँ सा। और देखो किसान भवन री जटे आपा बात करा जिन्हें आपा विश्राम गृह केवा, दूर दराज आवा वाला किसान ने रात में ठेरवार वास्ते मंडिया में किसान भवन वण्या वे वे।
0: हाँ सा।
1: जटे गद्दा है, पंखा है, आराम करवारी पूरी व्यवस्था वे वैसा।
0: बिल्कुल सा। और अगर भंडारण री बात करा तो देखो शीतल पेयजल और शौचालय भी अच्छी वटे सुविधा व्यवस्था मंडी परिसर में साफ पानी रो जो टैंक है वाटर कूलर जिन्हें आप कह सका वो लागे तो व्यवस्था, महिला और पुरुष किसान वास्ते अलग अलग स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी अटे व्यवस्था। टी शर्ट और चबूतरा की बात करा तो फसल ने धूप और अचानक आवा वाली बारिश बचाव वास्ते वटे बड़ा बड़ा कवर्ड शेड वे है, ऊंचा चबूतरा वाणा तका वे ताकि अनाज खराब भी नहीं व्यवस्था। और अंडा अलावा गोदाम री बात करा भंडारण की बात करा तो कई बड़ी मंडिया में आप देखा तो गोदाम री सुविधा भी वे जटे किसान तुरंत फसल ने नहीं बेची सके ऐसी स्थिति में अपनी उपज ने आप सुरक्षित स्थान पर रखी सके ऐसा।
1: देखो सा जटे वित्तीय सहायता और योजना री बात आवे तो वणी में आपा किसान भाई बहना ने बतावा कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना मंडी परिसर में या खेती रो काम करता समय अगर कणी किसान या खेती हर मजदूर रे लारे कोई दुर्घटना वे जावे तो असारे महीने अंग भंग वेणो या मृत्यु तो सरकार द्वारा 2 लाख तकरी वित्तीय सहायता दी जावे।
0: बिल्कुल।
1: तो वणी में कृषक उपहार योजना री बात भी आवे, अणिरे माध्यमो या मंडी में गेट पास करवाईने फसल वेचवा वाला जितना भी किसान भाई लोग है वणा ने मंडी समिति द्वारा लॉटरी सिस्टम रे जरिए ट्रैक्टर कल्टीवेटर और अन्य कृति उपहार जितना भी है वे वणा ने सरकार री ओर कृषि यंत्र उपहार स्वरूप में दिया जावे है सा।
0: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो जरूरी सुझाव रे अगर आप बात करा यदि भी आप मंडी में अपनी फसल लेन जावा तो अपने प्रवेश द्वार पर गेट पास जिन्हें आप कह सका कि एंट्री पर्ची है वह अपने किसान भाई ने जरूर लेनी चाहे सा। अणी पर्चू कही वेगा कि मैंने आने आधार पर अपने जो भोजन है भोजन जो कूपन है सरकारी योजना जो वेगा उपहार जितना भी है वनारो भी लाभ अपने मिल सकेगा सा, और भोजन भी अपने कम पैसा में मिल सकेगा सा। तो आप कह सका सरजू भाई सा कि मंडी में किसान वास्ते घनी सुविधा उपलब्ध है और अपना किसान भाई पूर्ण रूप से आप कह सका कि बटे सुरक्षित है वनारो अनाज सुरक्षित है वनारी फसल सुरक्षित है।
1: बिल्कुल
0: सा। है सा? तो यह तो बात आप अपने किसान भाई ने बताई सा। और अभी को तो अपने किसान भाई को राजस्थानी लोग ही सुनो सा।
1: हाँ सा।

0: तो अनीता भाई सा
1: हाँ सा
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा
1: हाँ सा
0: और देखो सा कि वाता चिता आपा घणी हारी की दिन घणी हारी करा पर देखो एकदम हूँ आपा बात करता करता देखो घड़ी री आड़ी नाला तो देखो आणी कार्यक्रम चालवारो टेम वे गयो ऐसा तो चाला सा
1: चाला सा राम राम सा
0: राम राम सा।

0: कृष्ण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है।

0: हैं जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष भाग, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी पहली सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर उनका खास कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां बात होगी आज के युवाओं की, उनके सपनों की, उनकी सोच की और उनकी उड़ान की। क्योंकि युवा सिर्फ आने वाला कल नहीं, युवा है आज की आवाज़, आज की पहचान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मेघना और मेरे साथ हैं
1: कशिश

0: कार्यक्रम की शुरुआत में आपको लिए चलते हैं शहर की बात, जहां आज का सफर है हमारा हरियाणा की धरती पर, जहां परंपराएं भी हैं, आधुनिकता भी, और हर शहर की अपनी एक अलग आवाज़ भी। और हमारी पहली मंजिल है अंबाला। हरियाणा के उत्तर में बसा ये शहर अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही अंबाला कैंट याद आता है, भारत का एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र। साथ ही यह व्यापार और आवागमन का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ हरियाणवी, पंजाबी और उत्तर भारतीय संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है।
1: जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं रेवाड़ी की ओर। यह एक दक्षिण पश्चिमी में बसा हुआ है। यह एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान जुड़ी है वीरता, परंपरा और इतिहास से। रेवाड़ी को भारत के पुराने रेलवे इतिहास से भी जोड़ा जाता है। यहाँ का रेलवे हेरिटेज इतिहास इसे खास बनाता है। यह क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम और वीर योद्धाओं की कहानियों के लिए भी जाना जाता है। रेवाड़ी का पारंपरिक जीवन, ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय त्यौहार इसकी पहचान को और मजबूत बनाते हैं।
0: और अब सफर पहुंचता है सिरसा, हरियाणा का एक प्रमुख शहर जो अपनी कृषि, संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए जाना जाता है। सिरसा क्षेत्र में खेती लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है और यहाँ के खेत, गांवों की जीवन शैली और लोक संस्कृति हरियाणा की असली तस्वीर दिखाते हैं। सिरसा की पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से जुड़ी हुई है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं।
1: अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अंबाला से रेवाड़ी तक कैसे जाएं। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो लगभग 260 से 280 किलोमीटर दूर है।

और यहाँ से सीधी ट्रेन अवेलेबल है, लगभग 6 घंटे का समय लेती है। और अम्बाला से सिरसा जाने के लिए बाई रोड लगभग 250 किलोमीटर है, और इसके लिए भी ट्रेनें अवेलेबल है, और कार या बस के द्वारा भी आप जा सकते हैं। उससे आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। हर शहर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह अपने अंदर हजारों कहानियाँ छुपाए रखता है।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी, और अब युववाणी में आप आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे प्रकृति की बात एपिसोड 7।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
3: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
4: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं।

पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में यह होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी

0: है, वो हमसे उस दाने को खरीद रही है। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ साथ मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथककरण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है।

0: है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप दो टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहां तक कि जो हमारे सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: असर कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर

0: ये बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज। तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी
1: अंबिकापुर में। तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी
1: कुछ। तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, अंबिकापुर में एक स्कूल है
1: होली क्रॉस स्कूल,
0: होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: रैपर इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15 20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों को मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी,
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोचक को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात एपिसोड 7, जिसमें हमने सुना किस तरीके से हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रख सकते हैं और अलग अलग क्रिएटिव वेज जिनसे हम अपना सहयोग दे सकते हैं।

0: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज की कहानी है उन युवाओं की जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है धरती, पर्यावरण और आने वाले कल के लिए।
1: जिए बेस्टिडा पैट्रिक, यह मेक्सिको की ओटोमी टोल्टेक मूल निवासी हैं। जब उनके गृह नगर में भयंकर बाढ़ आई, तब उन्हें जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव समझ आए। वे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की प्रमुख आयोजक हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में 3 लाख युवाओं के ऐतिहासिक जलवायु मार्च का आयोजन किया था और री अर्थ इनिशिएटिव की सह संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक भी हैं, जो दुनिया भर में जमीनी स्तर के समुदायों का समर्थन करता है। आपको बता दें कि इन्हें टाइम 100 नेक्स्ट और फोर्ब्स चेंज मेकर जैसी प्रतिष्ठित सूचियों में भी शामिल किया गया है।
0: अब बात करते हैं वावा गथेरू की। वह केनाई मूल की अमेरिकी पर्यावरणविद हैं। वह प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप पाने वाली पहली अश्वेत पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका काम नस्ल, वर्ग और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंधों में केंद्रित है। वह जलवायु कार्यबल में अश्वेत, स्वदेशी और रंग के लोगों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लड़ती है। वह ब्लैक गर्ल एनवायरमेंटलिस्ट की संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक भी है। उन्हें लोग के डिजिटल कवर पर बिली इलिश द्वारा आमंत्रित किया गया था और उन्होंने हेजेल एम जॉनसन फेलोशिप की शुरुआत भी की है।
1: तो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जलवायु न्याय कार्यकर्ता हैं। वे जलवायु परिवर्तन के संकट में नस्लीय और सामाजिक न्याय को शामिल करने के लिए जाने जाती हैं, ताकि पर्यावरण आंदोलन को अधिक समावेशी बनाया जा सके।

0: अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन विशाल निर्माण कार्यों की जो इंजीनियरिंग और मानव क्षमता की नई सीमाएं तय करते हैं। आज का सफर हमें ले चलता है हिमालय की ऊंची वादियों में, जहां पहाड़ों के बीच बहती एक शक्तिशाली नदी पर बन रहा है दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत प्रोजेक्ट्स में से एक, मेडॉक हाइड्रो पावर स्टेशन। मेडॉक चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है, जहां से होकर बहती है विशाल यारलुंग सांगपो नदी। यही नदी आगे चलकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है।
1: यह परियोजना नदी की विशाल जल ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए बनाई जा रही है। हिमालयी क्षेत्र में नदी का तेज बहाव और ऊंचाई का अंतर इसे जल विद्युत उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है।
0: लेकिन दोस्तों, इतनी ऊंचाई और कठिन इलाके में निर्माण आसान नहीं होता। घने पहाड़, गहरी घाटियां, भूकंप की संभावना और कठिन मौसम हर कदम पर इंजीनियर्स के सामने नई चुनौती खड़ी करते हैं।
1: और लगभग 60,000 मेगावाट की क्षमता के साथ यह वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े बांध चाइना के थ्री जॉर्जेस डैम से भी 3 गुना अधिक बिजली पैदा करेगा। इसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 300 टेरावाट घंटा होगा।
0: इसकी अनुमानित लागत जो है वो लगभग $137 बिलियन से भी अधिक बताई जा रही है, और इसका निर्माण जुलाई 2025 में शुरू हुआ था और इसे 2033 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेकिन नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव, भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण और संभावित रूप से पानी के बहाव को रोकने या अचानक छोड़ने की रणनीतिक क्षमताओं के कारण भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

0: तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत की एक ऐसी महान खिलाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी मेहनत, लगन और हिम्मत आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज का हमारा विषय है पीटी उषा, जिन्हें पूरे देश में भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सफलता का रास्ता बनाना आसान नहीं होता। कठिन मेहनत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास ही उसे ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं। पीटी उषा का जीवन इसी बात का सबसे अच्छा उदाहरण है।
1: इनका जन्म 27 जून 1964 की एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्हें दौड़ने का बहुत शौक था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
0: उन्होंने हमेशा मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन पीटी उषा का बचपन भी आसान नहीं था। गांव में खेलों की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, दौड़ने के लिए आधुनिक ट्रैक नहीं था, फिर भी वे रोज अभ्यास करती थी, कभी तेज धूप में, कभी बारिश में, लेकिन उन्होंने अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। उनकी यही लगन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।
1: स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिताओं में वे हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थी। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा लोगों को नजर आने लगी और इसी दौरान प्रसिद्ध कोच ओएम नाम्बियर की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने पीटी उषा को सही प्रशिक्षण दिया। कोच और खिलाड़ी की यह जोड़ी भारतीय खेल इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है।
0: सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। पीटी उषा रोज कई घंटों तक मेहनत करती थी, वे समय की बहुत पाबंद थी। उन्होंने कभी आलस को अपने पास नहीं आने दिया। यही कारण है कि वे धीरे धीरे भारत की सबसे तेज धाविका बन गई। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार कई स्वर्ण पदक भी जीते। उनकी गति देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे।
1: इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 1984 समर ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। 400 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और वे कांस्य पदक से केवल 0.01 सेकेंड की पीछे रह गई थी।
0: हालांकि उन्हें पदक नहीं मिला, लेकिन पूरे देश ने उनकी मेहनत की सराहना की। आज भी यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है। 1982 के एशियन गेम्स में उन्होंने 2 रजत पदक जीते। इसके बाद 1986 के एशियन गेम में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी सफलता ने भारत में एथलेटिक्स के प्रति लोगों का विश्वास और उत्साह बढ़ाया।
1: दोस्तों, जब कोई व्यक्ति देश का नाम रोशन करता है तो देश भी उसका सम्मान करता है। पीटी उषा को भी उनके प्रतिष्ठित अनेक
0: इन्होंने भारतीय सेना के पहले बैच के अधिकारियों में शामिल थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक युवा अधिकारी के रूप में की। वे हमेशा अनुशासन का पालन करते थे और अपने साथियों का सम्मान करते थे। उनकी बहादुरी और समझदारी के कारण उनके अधिकारी भी उन पर भरोसा करते थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और एक

0: युद्ध में उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला नहीं टूटने दिया। उनकी वीरता देखकर उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे।
1: उन्होंने बहुत सोच समझकर योजना बनाई और अपने सैनिकों का सही नेतृत्व किया। उनकी रणनीति के कारण भारत ने शानदार जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यह जीत भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य सफलताओं में से एक मानी जाती है।
0: सैम मानेकशॉ हमेशा अपनी सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे, कठिन समय में भी शांत रहते थे, साफ साफ बात करते थे और सही निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने सैनिकों का विश्वास जीत सके।
1: सैम मानेकशॉ के जीवन से हमें बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। हमेशा सच्चाई का साथ देना, कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देश की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अनुशासन और मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम का साथ दे।
0: सैम मानेकशॉ ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिताया। उनका निधन 27 जून 2008 को वेलिंगटन में हुआ और आज भी उन्हें भारत के सबसे महान सैन्य नेताओं में गिना जाता है।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मैं बताने जा रही हूँ जिनका नाम सुनते ही वीरता, न्याय और एकता की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। आज का हमारा विषय है महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ शेरे पंजाब कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा शासक केवल युद्ध जीतने वाला नहीं बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा रक्षक भी होता है।
1: महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरनवाला में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह था और माता का नाम राजकौर था। जब वे छोटे थे तब उन्हें चेचक हो गया था और इस बीमारी के कारण उनकी एक आँख की रोशनी चली गई, लेकिन इस कठिनाई ने उनके हौसले को कभी कम नहीं किया।
0: रणजीत सिंह बचपन से ही बहादुर थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का अभ्यास कराया गया था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनकी बहादुरी देखकर लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने अपनी समझदारी और साहस से इन क्षेत्रों को एकजुट किया।
1: साल 1801 में उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। यहीं से फॉर्मेशन ऑफ द सिख एम्पायर की शुरुआत हुई। महाराजा रणजीत सिंह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके दरबार में सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी को समान सम्मान मिलता था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे।
0: अब बात करते हैं आर डी बर्मन की, जो एक ऐसे भारतीय फिल्म संगीत की उस महान शख्सियत की जिनके गाने आज भी हर उम्र के लोगों की पहली पसंद है। आज भी पुराने और सदाबहार गीतों की बात होती है तो एक ही नाम आपके सामने आता है। जी हाँ, आर डी बर्मन।
1: उनका जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता एसडी बर्मन हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनकी माता मीरा देव बर्मन भी संगीत से जुड़ी थी। इस तरह बचपन से ही उनके घर में संगीत का माहौल था और कहा जाता है कि बचपन में राहुल देव बर्मन जब रोते थे तो उनकी आवाज़ संगीत के पांचवें सुर जैसी लगती थी, इसलिए उन्हें प्यार से पंचम कहा जाने लगा और बाद में यही नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया।
0: आर डी बर्मन को बचपन से ही संगीत सुनना और नए नए वाद्य यंत्र बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली। वे हमेशा कुछ नया सीखने की सोचते थे। यही वजह थी कि उनके संगीत में नई धुनें और अलग अलग प्रयोग देखने को मिलते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक संगीतकार के रूप में की। धीरे धीरे उन्हें स्वतंत्र रूप से फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला।
1: उनका संगीत इतना अलग और मधुर था कि लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। दोस्तों, आर डी बर्मन ने ऐसे अनेक गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कुछ प्रसिद्ध गीत की बात करें, जैसे महबूबा महबूबा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ हसीना जुल्फों वाली, हमने तुमसे प्यार कितना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इन गीतों को आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं।
0: आर डी बर्मन को अपने शानदार संगीत के लिए कई पुरस्कार भी मिले। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कई बार मिला। उन्हें कई फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी मिला। आर डी बर्मन का विवाह प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से हुआ था। दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत भी दिए।

0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं थी आपकी दोस्त मेघना, और मेरे साथ
1: कशिश।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण

0: नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान आईस कौर को फिल्म सिम्बा में, संगीत तनिष्क बागची।

0: आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
1: रेडियो लेक सिटी, लेक
0: सिटी। हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यही आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
0: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी। श्रोताओं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे अपने मोबाइल के ज़रिए, तो मोबाइल के ज़रिए आप हमें जोड़ सकते हैं खुद से और हमारे प्रोग्राम्स कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आपको न्यूज़ ऑन AIR ऐप, ये ऐप डाउनलोड करना है और लाइव रेडियो में जाके उदयपुर के स्टेशन यानी आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक सिटी से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत जिसे हमने चुना है फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज़ राहत फतेह अली खान की, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, रेखा भारद्वाज और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अभी आपने बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत सुना। और लीजिए सुनिए अगला गीत बॉर्डर 2 फिल्म से, संगीत अनु मलिका, और इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौर और साथियों ने।

मॉडर्न टू फिल्म से विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौर और साथियों के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। और लीजिए सुनिए अगला गीत, प्रीतम के संगीत से सजा हुआ, आवाज़ केके की और फिल्म है गैंगस्टर।

हर्षिता जी, सुनिए फिल्म संगीत का आखिरी नगमा जिसे हमने चुना है फिल्म लापता लेडीज से। आवाज अरिजीत सिंह की और संगीत राम संपत।

0: लापता लेडीज़ के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और शाम 6:40 पर होंगी जिले की चिट्ठी और शाम 6:45 पर सुनेंगे आप राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। एचपीसीएल की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल, प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026, उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया। श्री शर्मा ने पात्र उद्यमियों को रीको के भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण और सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। 33 लाख से अधिक एमएसएमई के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
2: तो मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे। एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कामों का सकारात्मक संदेश दिया। राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। एचपीसीएल की ओर से पहले चरण में राज्य भर में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी गई। इसके लिए प्रदेश में 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जहां रिटेल आउटलेट्स के लिए

0: HPCL 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 31 जुलाई तक इस बारे में नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सरकारी भूमि HPCL को लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 महीनों में इसका पानी जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और अन्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है, जिससे इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने बताया कि गर्मियों में पेयजल संकट से राहत के लिए 4 अतिरिक्त जलाशयों को भी मंजूरी दी गई थी। फलसूंड जलाशय में पानी भरना शुरू हो चुका है और बाकी जलाशयों में भी जल्द पानी पहुंचेगा।
1: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लूजर्स आते हैं और पानी का संकट डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांव की ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
0: देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवागमन स्थलों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। राज्य के टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं, जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए आज कई स्थानों पर आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की उत्सुकता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 सालों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे फायदा पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था

0: बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके मेहनताने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके तहत कुल 269 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर इन व्यवस्थाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून की गतिविधियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले अब भी तेज गर्मी और उमस के प्रभाव में हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार जताए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। आज 27 जिलों में अंधड़ और बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा जिले के कई जगह तेज बरसात हुई। उधर सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आबूराज में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उधर बालोतरा और सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 29 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिरला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण शर्मा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण, कृषि, सामाजिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। आइए जानते हैं जिले के बीते माह की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में आज की चिट्ठी में। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन दिनों शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिले की सभी 10 नगर निकायों में ये शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मकानों के पट्टे, नामांतरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। जिले में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जल संरक्षण से जुड़ी अनेक

0: गतिविधियां हुई। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम चूरू के प्रसिद्ध सेठानी के जोहड़े में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान के दौरान जिले में 3,526 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। आयोजन आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष चूरू जिले में 1,624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 177 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जिले में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, चूरू, बीदासर और सुजानगढ़ क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में कमी आई है। कुछ स्थानों पर हालांकि जलभराव की स्थिति बनी, जिसे प्रशासन ने समय पर नियंत्रित किया। बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। जिले के किसान मूंग, मोठ, ग्वार, चवला और बाजरा की बुआई में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 40% बुवाई हो चुकी है। किसान अब अच्छी मॉनसूनी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 300 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा और सहायता से जुड़े मामलों में भी जिले में काम किया जा रहा है। सखी केंद्रों में प्राप्त अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पुलिस थानों में संचालित महिला सहायता प्रकोष्ठों में प्राप्त मामलों का भी निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1,990 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4,990 परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। योजना के माध्यम से कई परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जिले में मुहर्रम का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चूरू शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों ने भिड़ी सेवामा देवनसारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। एचपीसीएल का न्यू 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नवा पेट्रोल पंप खो दिया चाहला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टाबरा ने पोलियो खुराक पिलावन रो लगस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काल दे सवाना 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माथे प्रसारित पहला। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके आज जयपुर में विया राज्य थरा कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण ऐलान करिया। श्री शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 उद्यमियों ने भिड़ी सेवामा देवनसारू रैंप पोर्टल और ओडीओपी कॉफी टेबल बुक रोई अनावरण करियो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस साल 25 नवा स्टार्टअप्स ने रोकड़ मदद दिया जाऊन रो ऐलान करियो।

0: श्री शर्मा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पात्र उद्यमियों ने रीको जमीरा आवंटन पाने सौंपया। साथ ही न्यारी न्यारी योजनाओं रो फायदो लेवन वाला ने 13 करोड़ रुपयों बत्तीरी रकम रा कर्ज और सब्सिडी रा चेक दिया। ई मौके बोलता श्री शर्मा कहो के सरकार उद्यमिता ने बढ़ावो और विनिवेश ने बढ़ावो देवन सारू बरोबर काम कर रही है। वना कहो के विकसित भारत रा विजन ने साकार करण में एमएसएमई री महत्व भूमिका है। 33 लाख बत्ती एमएसएमई रे साथ राजस्थान देश रो चौथो सबू मोटो राज्य बन गयो है।
1: तो मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो।
0: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रिया। एमएसएमई दिवस रे मौके राखी जी जलसा में प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार बनावन ने लेर कराया जा रहा कामा रो सकारात्मक संदेश दी रिजियो। राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार ने घणो बढ़ाव मिलेला। एचपीसीएल कानियों पहला चरण में राज्य भर में 332 नुआ पेट्रोल पंप खोलिया जाएला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में आज जयपुर में भी एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रा एहलकारों की मीटिंग में आ जानकारी दी रही। इस सारू प्रदेश में 304 ठोड़ा री पिछाण करी जा चुकी है, जठे रिटेल आउटलेट्स सारू एचपीसीएल 400 करोड़ रुपया रो निवेश करेला। 31 जुलाई तई ई बारा में नवी नीति तैयार कर ली जाएला। बैठक में ओई फैसलो लीजियो के परियोजना रे तहत सरकारी जमीन ने एचपीसीएल ने लीज माथे मुहैया कराई जाएला, जीणो नुआ पेट्रोल पंप स्थापित कराया जा सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि जोधपुर लिफ्ट केनाल रा तीजा चरण रो काम आखिरी दौर में है। वना आस जताई के आवता 3-4 महीना में इन रो पानी जोधपुर पूग जाएला। आज जोधपुर में मीडिया साथे बतल में श्री शेखावत कहो के ई परियोजना में लंबा बगत हूँ चाल रही तकनीक और दूजी खामियां ने दूर करी जा है, जिणु इन रो काम तेजियों आगे बढ़ रियो है। श्री शेखावत बतायो के उनाड़ा में पीवण रा पानी री परेशानियों उभरण सारू 4 बत्ती जलाशय री मंजूरी दी रही है। वना बतायो के फलसूट जलाशय में पानी भरी जो वे चुको है और बाकी रा जलाशय में बेगा पानी पुगेला। देश ने
2: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट, डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांव की, ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
0: देश ने पोलियो मुक्त बनाया रखने रा मकसदों कालेओं राष्ट्रीय अभियान चलायो जाएला। इन रे तहत 5 साल तक रासगड़ा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जाएला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुजब राज्य रासगड़ा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रा, आंगनबाड़ी केंद्रा और खासतौरों बनाई जा पोलियो बूथा माथे आ दवा पिलाई जाएला। ये दिन खुराक बचोड़ा टाबरा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा दवा पिलावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के ई अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूजा आवन जावन री ठोड़ा टाबरा ने पोलियो दवा पिलावेला। राज्य रा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो के अभियान रे तहत प्रदेश रा 1 करोड़ 2 लाख टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावन रो लगस राखी जो है। इस सारू 60,000 पोलियो बूथ बनाई जा है।
3: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं, जहां पर की

0: कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे, किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने कामयाब और असरदार बनावन सारू आज कई ठोड़ा आशा सहयोगिनिया और नर्सिंग पड़ेसरा जागरूकता रैली निकाली। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आप रा विचार साझा करेला। ओ रेडियो मासिक कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जायला। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इन रो सीधो प्रसारण वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पछे क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा माथे आज ससेल्स पुग्या। हवाई अड्डा माथे ससेल्स राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वारो स्वागत करियो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहो कि ससेल्स हिंद महासागर में भारत रो महताऊ समुद्री साझेदार और कनेरो दोस्त है। श्री मोदी दोनों देशों रा लोगों रा फायदा सारू भारत और ससेल्स रा लंबी बगतरा संबंध और सहयोग ने बढ़ावा देवन सारू आस जताई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ने आवता 2 साल में देश रा 500 शहर और कस्बा ताई बधाई जायला। भारत टैक्सी रा उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल ने सहकारी हलका में एक क्रांतिकारी कदम बताया। वणे कहो कि भारत टैक्सी रो मकसद चालका ने सीधो फायदो पुगार निष्पक्ष और साफ गोई बंदोबस्त पारदर्शी व्यवस्था बनावणो है। वणे कहो इनने चालका ने मेहनतानो बत्तो मिलेला और लोगों ने हिफाजती और किफायती यात्रा रो फायदो ही मिल सकेला।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रो 16 जलसो काले नई दिल्ली में वेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इनकी सदारत करेला। जलसा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा स्वास्थ्य मंत्री सांसद ठवा एहलकार हिस्सों ले वेला। ई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लगस, खाद्य और औषधि सुधार और इनो जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं रा मुद्दा माथे बतली वेला। भारतीय सेनारी दक्षिण पश्चिम कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ऊ मिलिया। जयपुर माए लोक भवन माए भी ई भेंट माए वणा राज्यपाल ऊ न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 काले वेला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कान्यू आ परीक्षा ली जायला। इनरे तहत कुल 269 ओहदा सारू कामयाब उम्मीदवार ने चुनिया जायला। इम्तिहान ने कामयाब और सुचारू और साफ गोई संचालन सारू सगली तैयारियां कर दीजी है। परीक्षा केंद्र माथे करीजिया बंदोबस्ता ने करडायू लागू करने का निर्देश दीजिया है। नैबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों प्री मानसून री गतिविधियां री सक्रियता बरोबर बनी उड़ी है। वठई आथोनी राजस्थान रा कुछ जिला अजय करड़ी गर्मी और उमस रा फीट माए है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर माए दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह रियो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन माए राज्य रा उत्तर पूर्व और दक्षिणाध हल्का माए आंधी बिरखारी गतिविधियां बनी रहन रा आसार जताया है। कई जिला माए गरज चमक रे साथ झमाझम बिरखा वह सके है। आज 27 जिला माए अंधड़ और बिरखा रो येलो अलर्ट बताई जो है। वठे जुलाई रा पहला हफ्ता माए बिरखारी गतिविधियां माए बढ़वा री आस है। ई बीच आज बांसवाड़ा जिला माए कई थोड़ा तेज बिरखा भी। वठीने सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा और आरएसआर रा हल्का माए रिमझिम बिरखावणो मौसम सुहावणो बनियोड़ो है। आबू आज माए चोखी तादाद माए सैलानी पुग्या है। उठीने बालोतरा और सवाई माधोपुर माए करड़ी गर्मी और उमसू लोग परेशान रिया। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 रा राज्य थरो जलसो 29 जून ने जयपुर माए वेला। स्कूल शिक्षा महकमा कानी।

0: न्यू बिरला सभागार में होने वाला एक कार्यक्रम में भामाशाह प्रेरकों सम्मान करो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज महकमारा निदेशक सीताराम जाट बतायो के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी जलसा में भेड़ा वेला। मैं अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों ने भेड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल अनावरण करो। एचपीसीएल का न्यू 400 करोड़ रुपया निवेश करने राज्य में 300 नुआ पेट्रोल पंप खोलिया जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावर ने पोलियो खुराक पिलाउन रो लगस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माते प्रसारित वेला। मेंद्र साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए होगा उनका खास कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम सरजू भाई साहब, राम राम।
1: राम राम नानू भाई, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगला किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो सा, चौपाल रो टेम भी और चौपाल में बात बात री जानकारी देखो आप लाइन आई गया। हाँ, और किसान भाई बहना ने देखो आप खेती बाड़ी री जानकारी दा, लारे लारे सरकारी योजना री जानकारी दा, खास जानकारी बातचीत संबंधी जानकारी भी आप दा। तो आज चौपाल री बात में किसान भाई बहना रे बात है, कई जानकारी लाइन आया हो सा।
1: देखो सा कि जटे आपा बात करें कि फलदार पौधा और मानसून रोपण री, तो देखो नानू भाई अपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि मानसून रो मौसम फलदार पौधा रे रोपण रे वास्ते बहुत ही ज़्यादा उत्तम मान्यो गयो है। अणी दौरान हवा में उच्च आर्द्रता और मिट्टी में प्राकृतिक नमी वेवे है, जो पौधा री जड़ा ने तेजू फैलवा और स्थापित वेवा में मदद करे है। और आपा देखा कि अणी मानसून में अगर आपने बगीचा या खेत में फलदार पौधा लगावरी होची रिया, हाँ, तो अणिरे महीने भी आपा है एक अलग तरीको आपा मानसून में लगाया जावा वाला सब फलदार पौधा वे वणारी पौध आपा रोप सका सा, जणियों आपने उपज भी बढ़िया वे उपज लारे रह रहा, आमदनी भी हो वे जा।
0: बिल्कुल सही बात कह रहा हो। जड़े देखो मानसून रो समय आवा वालो और अने टाइम पे जो लगाया जा वाला फलदार पौधा है वनारी, अगर आप बात करा तो वन में देखो आम है, अमरूद है, नींबू वर्गीय है पौधा जो है वी है, और वनडे लारे अन्य फल रहा आप पौधा लगाई सका। जटे आम री बात करा तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली आदि किस्म है। अमरूद री जटे बात करा तो L49, लखनऊ 49, इलाहाबाद सभ्यता। नींबू वर्गीय में नींबू है, संतरा है, मौसम्बी रहा फल रहा पौधा है। और अन्य फल में जटे बात करा तो पपीता है, अनार है, जामुन है, लीची है, और चीकू जो है आप वैसा कहाँ। और अभी
1: बिल्कुल
0: अंडी रोपण री तैयारी री बात करा तो
1: बिल्कुल सा। तो नानू भाई देखो, अने रोपण री तैयारी री जटे आपा बात करी रिया हो, तो एक सफल बागवानी रे वास्ते सही तरीकों गड्ढा तैयार करी लेना है, पछे ताकि कई वेगा वन में पौधा लगाना बहुत ही जरूरी वे जाएगा। और दूसरी बात तो या कि यदि गड्ढा आपा हाउ तरीकों तैयार कर लांगा तो वन में पौधा लगा रो मजो भी आएगा। अब मैं आपा बात करा कि गड्ढा अगर करना है तो वनारी आकार और वने तैयारी कड़ी तरीकों करनी है, तो सब पहला पौधा लगावा कम कम 15-20 दनों पहला गड्ढा आपने खोदी लेना है। पछे वनारे जटे आपा आकार री बात करा तो सामान्यतः 1 × 1 × 1 मीटर लंबाई चौड़ाई गहराई रो गड्ढो आदर्श मान्यो जावे है। और छोटा पौधा अगर है जिस तरह आपा पपीता रा वे गया, तो वन में 50 × 50 सेंटीमीटर री दूरी राखनी है और बड़ी में गहराई भी 32 राखनी है। और अणीरे महीने गड्ढो भी काफ़ी वे जावे, तो अणी तरीकों गड्ढो राखनो है और गड्ढा री जो ऊपरी मिट्टी है वह एक तरफ और नीचे री मिट्टी दूसरी तरफ राखनी है, और थोड़ा दना तक धूप लागवा देनी है ताकि हानिकारक

0: जितना भी कीट वेगा, फंगस वेगा, वे पूर्ण रूप नष्ट हो जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा। और जटे देखो अंडे मिट्टी रे अगर तैयारी रे अगर आप बात करा तो गड्ढा ने भरवा बात है 50% खेतरी ऊपरी मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबरी खाद या केंचुआ खाद, 20% रेती अगर आपकी मिट्टी जो है वह चिकनी वे, और अन्य प्रकार देखो मिश्रण में लगभग 100-200 ग्राम नीमरी खली और थोड़ा सो ट्राइकोडर्मा अगर आप मलाई दा तो वणु कई वेगा दीमक और फंगस जो वेगा वनारो खतरों कम वेगा। और पौधा रे चुनाव री अगर आप बात करें और वंडे रोपण विधि री अगर आप बात करा तो कणी भी विश्वसनीय सरकारी नर्सरियों कलमी पौधा देखो आपने खरीदना है, क्योंकि कलमी पौधा में फल देखो जल्दी लाग जाए और गड्ढा रे बीचों बीच में एक छोटो सो छेद करने अपने पौधों जो है वो सीधो लगानो है सा। और जटे देखो ग्राफ्टिंग वालों हिस्सों वे वो जमीन 5-6 इंच ऊपर रहना चाहे ताकि वटे सड़न पैदा नहीं वे सा।
0: बिल्कुल सा, मानसून में बारिश वे है लेकिन अगर लगातार अणी दिन धूप निकल आए और बारिश नहीं हुए तो पौधा में आवश्यकता अनुसार हल्को पानी जरूर देनो है। पहला बार में पौधा जो वे वणा ने लगाऊं तुरंत बाद आपने भरपूर पानी देनो जरूरी है, क्योंकि अणी मानसून में आपा कसो फलदार पौधो लगानो है, कणी तरीकों आपने वन्ने दबाणो है और कणी तरीकों वन्ने हवा देनी है, तो अणी तरीकों आपने काम करनो है। जणू कई वेगा कि अपना पौधा भी स्वस्थ रहे और वनर फंगल भी नहीं लगे, तो आपा अणी तरीका अगर काम करांगा जदी जाई ने आपा व्यवस्थित रूप आपा वनी बुवाई कर न आपा हाउ तारी करा फल जो है ले ही सकांगा सा।
1: बिल्कुल सा, यह तो अच्छी बात की थी। और देखो एक बातचीत और मैं आपा बताना चाहूँ किसान भाई ने सावधानी में कि जो जल भराव है वनडो अपने विशेष ध्यान रखना, क्योंकि फलदार पौधा री जड़ा में देखो अगर पानी जमा हो गयो तो वो कई करेगा कि अपने जो पेड़ है वनने देखो कई करेगा कि सड़ ही सके या वनने बढ़वार ने जो है वो रोक सके, और तेज हवा आवे तो वनडे बातें भी मंडी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो बहुत ही प्यारी सी जानकारी जो है अपना किसान भाई बहना ने आपा दीदी सा कि फलदार पौधा और मानसून रोपण रे बारे में। और देखो सर नानू भाई आपा कार्यक्रम में आवान घनी हारी जानकारियां लावा किसान भाई लोगों के वास्ते, और कटे न कटे देखो आपा हाउ हो बड़े बड़े राजस्थानी गीत भी लावा वनारे मनोरंजन रे वास्ते, तो आप केवो तो वना ने ले ही चाला गीत गुंजन री दुनिया में और हुणावे एक राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सर।

0: तो नानू भाई
1: हाँ
0: देखो सा,
1: सर
0: बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है अपना किसान भाई बहना ने आप हुनायो सा। और देखो ने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अभी देखो जानकारी करावा मौसम विभाग री। तो देखो सा नानू भाई, मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे आगामी दिना रे महीने 1-2 किलोमीटर री हवा बारिश री संभावना है। और हवा री गति जटे बात करा 37.1% रे हिसाबू चलेगा सा। और अणि तरीका जो आपा देखा कि अणि अधिकतम तापमान री बात करा तो अणि रे महीने अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान री बात करा तो 26.3 डिग्री रेवारी संभावना है सा।
1: देखो यह तो दीदी आप मौसम री जानकारी और देखो कार्यक्रम आगे बढ़ता लगा सामान्य कृषि की जानकारी री जटे बात करा तो किसान भाई बहना ने देखो खरीफ फसला री वावणी रे वाते खेत री तैयारी रो काम देखो टेम पे पूरो कर लेनो है। खेत री गहरी जुताई करने वरने समतल बनाना और वर्षा जल संरक्षण रे वाते देखो मेड़बंदी जरूर करनी है। खेत में अच्छी लगी सड़ी गोबरी खाद और कंपोस्ट खाद मिलाई ने मिट्टी री उर्वरता बढ़ानी और वावणी रे वाते उन्नत किस्म रा बीज है उर्वरक है और जो अन्य आवश्यक कृषि साधन है वनारी व्यवस्था देखो अपने मानसून पहला कर लेनी है सा।
0: बिल्कुल हाँ जी बात कह रहे हो सा। देखो अणी रे महीने अगर आपने ज्वार री आपा बात करा तो खेत री हाउ तरीकों मिट्टी री भुरभुरी बनाई देनी है। और नानू भाई देखो वर्खा रो टेम है तो पर्याप्त नमी व्यवहार लारे लारे ज्वार री बुवाई भी कर देनी है। जटे आपा ज्वार री बुवाई करी लेवा तो मणि में बीज रो उपयोग भी हाउ तरीकों करनो है। बुवाई पहला बीज ने अनुशंसित फफूंदनाशी जैव उपचार में उपचारित जरूर करी लेना है। और बीज उपचार करीने पछे बुवाई करनी है। और जटे लारे लारे आप मूंगरी बात करा नानू भाई तो मूंगरी फसल में पीत शीरा मोजेक रोग रे रोकथाम रे वास्ते डाई मिथियोर 30 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिले इन वणी रो छिड़काव करी देनो है सा।
1: जटे देखो मक्का री बात करा तो वावणी रवाते खेत में पर्याप्त नमी व्यवहार पे प्रामाणिक बीज रो अपने प्रयोग करनो है। बीज उपचार करने वावणी करनी है ताकि उचित दूरी देखो बनाए रखनी है। खरपतवार नियंत्रण री जटे बात करा तो कीट निगरानी अपने टेम टेम पे करनी और अंडी उन्नत किस्म री जटे बात करा तो प्रताप QPM1 HQPM1 HQPM5 PEHM2 और प्रताप शंकर मक्का 1 है। और जटे देखो सोयाबीन रे अगर आप बात करा तो सोयाबीन रे वावणी रे टेम खेत में देखो पर्याप्त नमी रखनी और प्रामाणिक बीज रो आपने उपयोग करना है। वावणी में पहला देखो बीज ने बीजोपचार करांगा तो वो अपने वाते लाभदायक रहेगा और उन्नत किस्म रे जटे बात करा तो प्रताप सोया 1 प्रताप राज सोया 2 MRC 37 JS 335 JS 71 और JS 9560 अंडी उन्नत किस्म है।
0: बिल्कुल सा। जटे आप टमाटर की बात करा तो यो समय टमाटर की पौध बनावर वास्ते उपयुक्त है। बीजा ने थायरमु 2-2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम री दर उपचार करीने पचे पौधशाला में बुवाई करना है। अने इस लारे ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा तो गर्मियारा महीना में हरा चारा री कमी काफ़ी आम है। अणी वास्ते हरा चारा वाली फसला जिस तरह ज्वार वेगी बाजरा वेगी मक्का वेगी अणा सब री खरपतवार नियंत्रण करी लेनो है। और चारा री कटाई उचित व्यवस्था पे करनी है ताकि कई वेगा कि पशुओं ने पौष्टिक हरो चारो आसानी मिली सके सा।
1: और जटे देखो पशुपालन रे अगर आप बात करा तो आने टाइम पे देखो पशुओं ने स्वच्छ और ताजा पानी पर्याप्त मात्रा में अपने पिलानो है। पशुओं ने छायादार और हवादार स्थान पर रखना और पशुओं ने वर्षा तेज धूप और अन्य प्रतिकूल मौसमों बचाव री पूरी व्यवस्था अपने रखनी है। और जटे देखो वर्षा जल रही अगर आप बात करें तो वर्षा जल ने देखो संचित करवाऊँ खेत में गहरी जुताई री टेम पे वे लाभदायक वेगा सा। तो देखो या तो किसी मौसम संबंधी और सामान्य कृषि की जानकारी और किसान भाई बहनों और आपा सब होना एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत
0: बिल्कुल सा।

0: तो नानू भाई
1: हाँ
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सा राजस्थानी गीत हुणायो सा। और देखो सा कि अबे जानकारी करावा अपना किसान भाई बहन मंगला पशु बीमा योजना री। तो देखो सा कि यह जो योजना है यह योजना भारत में पशुपालकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करावारे उद्देश्यों शुरू की दी गई और यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी योजना है और बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजना भी है। अणि योजना रो मुख्य उद्देश्य दुधारू और अन्य मवेशियारी असमय मृत्यु वेवा पे पशुपालकर वेवा वाला आर्थिक नुकसानों वंचाव करनो है सा।
1: बिल्कुल सही बात कर रहे हो जेटे। देखो अंडे उद्देश्य रे आप बात की दी तो में देखो बीमारी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण पशु री मृत्यु वेवा पे पशुपालका ने देखो मुआवजो प्राप्त भेज सकते। गरीब और सीमांत किसान बेफिक्र वहीने उन्नत नस्ल रा जो पशु है वहाँ ने पालवा रहे वाते प्रोत्साहित करवा रहे वाते यह योजना लाभदायक और लारे लारे पशु री मौत रे बात में दोबारा नया पशु खरीदवा रहे वाते अनेक किस्म में जो है देखो वहाँ ने लाभ मल है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात कही रहो सा। और देखो कणी कणी पशोरा बीमो वे सके या बात भी आपा किसान भाई बहना ने बतावा कि अणी योजना रे महीने मुख्य रूपु दो श्रेणियारा पशु शामिल करी सका। हाँ पहला पशु बड़ा दुधारू और भारवाहक पशु गाय भैंस सांड ऊंट घोड़ा गधा और खच्चर। और छोटा पशु री जटे आप बात करा वनमें भेड़ बकरी और सुअर आवे तो अणी तरीकों अणा पशुओं आपा बीमो करवाई सका सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सरकार द्वारा नई योजना में जो पशुपालक है वहाँ ने श्रेणी रे आधार पर देखो सब्सिडी भी दे ताकि गरीबों गरीब किसान जो है वो अंडो लाभ उठा सके। झटेणी योजना में नियम और शर्तारी अगर आप बात करा तो उनमें बीमा वेते ही पशु रे कान में एक प्लास्टिक रो UID टैग लगायो जावे यो दावो पास वाते बहुत जरूरी। और जटे देखो अंडी बीमारी अवधि रे अगर आप बात करा तो सामान्यतः यो बीमो 1 वर्ष लेने 3 वर्ष री अवधि रे बातें की हो जावे। और यदि पशु री मृत्यु हो जाए तो क्लेम री प्रक्रिया रे बातें 2848 घंटा रे भीतर बीमा कंपनी या नजदीकी पशु चिकित्सालय में सूचना देनी वे या डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार व्यवहार बाद दावा राशि जो है सीधा बैंक खाता में आई जावे है सा।
0: बिल्कुल हाँची बात की।

0: केरोसा और अणि में देखो आवश्यक दस्तावेज जटे आप बात करा और किसान भाई बहन ने बतावा कि अगर अणि योजना रो आप लाभ उठाना चाहो हो तो आपरे पास में ये सब दस्तावेज मिलना जरूरी है। अणि रे महीने आवेदन रे तौर पे आपरो आधार कार्ड, आपरो पहचान पत्र जन्ने किसान भाई लोग कालो फोटो केवे, और भामाशा कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड भी जरूरी है, बैंक खाता री पासबुक ताकि क्लेम राशि सीधा खाता में आई सके, पशु रो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा जारी करियो जावे, और पशु रे लारे पशुपालक री एक संयुक्त तस्वीर। तो अणि तरीकों आपने ध्यान रखना है कि अगर अणि योजना रो लाभ उठाना है तो आपने सब ये दस्तावेज रेडी रखना है।
1: और अणि योजना रो लाभ लेवारे वास्ते आप नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय रा डॉक्टर साहबू या पाछे नजदीकी जो ई मित्र केंद्र है वनडे पाते जेने जो सरकारी ऑनलाइन वेबसाइट है वनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जेने आप आवेदन कर सको हो सा।
0: बिल्कुल सा। और नानू भाई देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी आपा किसान भाई लोगों ने दी दी, और देखो सा एक और राजस्थानी गीत थोड़ा ही ना मनारो मनोरंजन कराई दा सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो नानू भाई
1: हाँ
0: देखो
1: सा
0: सा, बहुत ही प्यारो सा राजस्थानी गीत होनायो सा। और अभी देखो सा, जानकारी ने आगे बढ़ाता था का किसान भाई बहना ने जानकारी अभी एक और करावा कि सोलर कुकर रे बारे में। तो देखो सोलर कुकर री जटे आपा बात करा तो सूर्य री किरणों मिलवा वाली ऊर्जा जने आपा सौर ऊर्जा कहवा, वणी रो उपयोग करीने खाणों पकावा वालों एक बेहतरीन और पर्यावरण अनुकूलन उपकरण है। भारत जैसा देश में जटे साल रा अधिकांश महीना में हव तरीकरी धूप उपलब्ध रहे तो सोलर कुकर ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्र रे वास्ते बहुत ही ज्यादा उपयोगी है सा।
1: बिल्कुल सही जटे। देखो आप बातचीत में सोलर कुकर ही उपयोगी तरह बात है बात कर रहे हैं। तो देखो जटे में पहली बात अगर आप करा तो देखो सोलर कुकर ने चलावाऊँ जो अपने ईंधन खर्चों मुक्ति मिले, क्योंकि सोलर कुकर चलाऊँ LPG गैस बिजली कोयला लकड़ी अनारी जरूरत नहीं हुए और ये पूरी तरह मुफ्त सौर ऊर्जा पर चाले है, जणू की रसोई रे बजट में बड़ी बचत हुए। और जटे अंडे रख रखाव रही अगर आप बात करा तो अणमें कोई भी गतिशील पुर्जो नहीं हुए, जणू की अंडे खराब हुए वाली संभावना न रहे बराबर रहे और ये सालों साल जो है वन्ना कणी अतिरिक्त खर्च रे जो है वो चाल तो रे वैसा।
0: सेहत और पोषण रे वास्ते भी वरदान है। जिस तरह आप कहवा कि पोषक तत्वारी सुरक्षा, सोलर कुकर में खाणो वणावणो धीमी आंच पे पाके, अणी वजह भोजन में मौजूद विटामिन प्रोटीन और अन्य आवश्यक जितना भी पोषक तत्व वे नष्ट नहीं वेवे है, जो तेज आंच पे पाकों अक्सर जली जावे है। अन्य लारे लारे देखो स्वाद और सुगंध री बात करा तो धीमी आंच पे पाकवारे कारण भोजन रो प्राकृतिक स्वाद रंग सुगंध बरकरार रहे है। अणी ने महीने वणियों तक को खाणो

0: शरीर वास्ते बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य और पौष्टिक व्या करे है। और जटे धुआं मुक्ति रसोई री आपा बात करा नानू भाई, तो पारंपरिक चूल्हा री तरह अणी में भी धुओं नहीं निकलनो, जणियों महिला रे आँखा और फेफड़ा री बीमारी उमड़ा ने पूर्ण रूप मुक्ति मिल जासा।
1: और जड़े देखो सोलर कुकर की अगर आपा बात कर रहे हैं तो देखो यो खाना पकाओ में एक स्वच्छ माध्यम रे रूप में काम आवे, जो कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे, क्योंकि अंडे उपयोग कार्बन उत्सर्जन कम वे और जो पर्यावरण प्रदूषित वे वन में भी देखो नहीं वे है। और जटे देखो ग्रामीण क्षेत्र में सोलर कुकर उपयोग बढ़ावा कही वेगा कि जो लकड़ी पर निर्भरता है लोगारी वह कम वेगा और जंगल काटवा जो है वो मचायो जा सकेगा।
0: और देखो सा कि उपयोग में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और आसान री चट्यापा बात करा तो जलवा या फटवारों कोई असर नहीं रहे। तो अणी में यो रहे कि अगर यो जलवाओं और फटवाओं कोई डर नहीं रहेगा तो अणी में इन्हें सब महिला जो काम करवा भी इच्छुक वेगा। अणी में LPG सिलेंडर की तरह गैस रिसाव या आग लागवारा कोई खतरो भी नहीं वेगा और न ही प्रेशर कुकर की तरह अणी में फाटवारो डर रहेगा सा। और लारे लारे समय री जो बचत वेगा कि सोलर कुकर में खाणो रखता समय जलवा या उबलिन बाने आवा घीरवारी भी चिंता नहीं रहेगा। अणियों एक बार धूप में सेट करवारे बाद में आप बेफिक्र वही ने आराम वो आपरो काम निपटाई सको हो, जतरे आपरो खानो है वणी ने तैयार वही जाएगा सा।
1: बिल्कुल सही। तो जटे देखो अब सोलर कुकर की बात की थी तो किसान भाई बहन देखो जो सोलर कुकर है अंडो अगर उपयोग करे तो देखो उन्होंने लाभ होगा, लेकिन यो जो है देखो खाली धूप वाला दिन में ही इस्तेमाल किया जा सके, घना बादल और कोहरा में देखो ये काम नहीं करेगा और अण में जो है वो भोजन जो है थोड़ा समय अधिक लगे। तो कई बात नहीं देखो जनदान सूरज बाबूजी रो पूरा तावड़ो रे वही टाइम आपा सोलर कुकर रो उपयोग करने अपने देखो पर्यावरण ने भी बचा सका और अपने खेती बाड़ी रो जो काम है भी आसानी निपटा सका। और देखो कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन बैठा है और आपा भी बैठा है तो अणा सबरो मनोरंजन कराने प्यारा सा राजस्थानी लोकगीत ला रहे।

0: तो देखो सरजू भाई साहब, यो तो होने आप प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा, देखो आज रे दिन री बात करा तो आज है 27 जून, यानी कि आज रे दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है वंडे रूप में यो मनायो जावे है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017 में यानी दिवस की शुरुआत की दी गई ही, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, सतत विकास में छोटा उद्योग जतरा भी है वनारे अमूल्य योगदान ने सराहियो जा सके, वनाने बढ़ावो दियो जा सके। अणी रे कणी भी देश री अर्थव्यवस्था री रीढ़ री हड्डी मान्यो गयो है सा। और दिवस रा महत्व री जटे आपा बात करा तो अणी MSME रे दिवस री श्रेणी में भारत सरकारे प्रयासा ने जो है कि आपा अगर अणी तरीकों ध्यान में राखी भणा तो अणा ने हम सका सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो जटे। देखो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है अन्न मनावरे उद्देश्य रे अगर आप बात करा तो दुनिया भर में लगभग रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद ने छोटा उद्योगों में आवे और अणि दिवस रो उद्देश्य युवा ने स्वरोजगार रे वाते प्रेरित करनो। जटे सतत विकास लक्ष्य रे अगर आप बात करा तो वणारो सही उपयोग करने गरीबी मिटावा और महिला और बच्चा रे वाते में देखो अणमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सके है।
1: बिल्कुल सा। जटे आप नवाचार री बात करा तो नवाचार ने प्रोत्साहन जिससे छोटा उद्योग ने नई तकनीक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जोड़नो ताकि वैश्विक बाजार में मुकाबलो कर सके सा।
0: और जटे देखो अणमें आप अगर वर्गीकरण री बात करा तो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान रे तहत अण में देखो आप सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम रे रूप में अन्य देख सका हाँ सा।
1: बिल्कुल सा। भारतीय अर्थव्यवस्था रो योगदान री जटे आप बात करा तो GDP में हिस्सेदारी, भारत री कुल GDP में अणा उद्योग रो योगदान लगभग 30% है। रोजगार रो हब देश में कृषि बाद यह दूसरा सब बड़ो क्षेत्र है। लगभग 11 करोड़ अधिक लोगों ने आजीविका प्रदान करी रो है। और जटे आप निर्यात री बात करा तो भारत वेवा वाला कुल निर्यात MSME क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 45% टू 48% तक है।
0: और जटे अणा उद्योग और वाते प्रमुख सरकारी योजना री अगर आप बात करें तो सरकार छोटा उद्यमा ने आसानी लोन और संसाधन उपलब्ध करावाते कई सारे योजना चलावे, जिनमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में अंडे

0: तो छोटा व्यापारी आसानी ऑनलाइन और निःशुल्क पंजीकरण करवाई ने सरकारी योजना रो लाभ ले सके। जटे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना री अगर आप बात करें तो वन्ना कणी गारंटी रे जो है व्यापार ऋण और प्रदान की दो जावे, और पीएम विश्वकर्मा योजना री अगर आप बात करा तो पारंपरिक कारीगर जिस तरह की लोहार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, अणा ने कौशल प्रशिक्षण और टूल किट और सस्ता लोन रे द्वारा जो है अणा ने बढ़ावो दियो जावे। तो देखो आज रे दिन देखो आप बात की थी छोटा लघु और मध्यम उद्योग दिवस री, और देखो कार्यक्रम आगे बढ़ा और को तो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत हुणा सा।
1: हाँ सर,

0: तो देखो सरजू भाई, सही हो तो हो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में देखो अबे बात करा आज रे दिन री पुण्यतिथि महाराजा रणजीत सिंह री।
1: हाँ सा, तो देखो आज 27 जून महान सिख साम्राज्य का संस्थापक और अदम्य साहस का प्रतीक शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। 27 जून 1839 ने लाहौर अब पाकिस्तान में बनारो निधन भी हो।
0: बिल्कुल सही, वे एक ऐसा कुशल रणनीतिकार, दूरदर्शी शासक और धर्मनिरपेक्ष राजा हा जना बिखरा लगा सिख जो है वनाने एकजुट करने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की दी और अपनी सीमा ने फैलायो सा।
1: बिल्कुल सा। और महाराणा रणजीत सिंह रो जन्म 13 नवंबर 1780 गुजरात वन में वाला में व्यो हो। बनारा पिता रो नाम हो महा सिंह और माता रो नाम हो राजकुमार। और यदि वे छोटा हा तो वे बहुत ही बहादुर हा। और बना ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला रो अभ्यास करायो गयो। बहुत ही कम उम्र में बना अपना पिता रे लारे युद्ध में भाग लीधो हो सा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो, और साल 1801 में पंजाब रो महाराजा वणा ने घोषित की दो गयो। वणा न केवल योद्धा री तरह बल्कि एक अच्छा प्रशासक रे रूप में भी काम की दो। और जटे देखो वणा रे आप आज बात कर रहे हैं तो वणा जो है प्रसिद्ध कार्य अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल रो सौंदर्यीकरण भी करायो हो सा।
1: बिल्कुल सा। मंदिर के ऊपरी हिस्सा में सोनो चढ़वायो गयो। अणी कारण अणा ने राज आज भी स्वर्ण मंदिर रे नामु जाण्यो जावे है। वणारा कई मंदिर, गुरुद्वार, मस्जिद भी दान है दीदा सा।
0: और रणजीत सिंह बहुत सरल स्वभाव रहा, वे आम लोगों की बात ध्यान हुणता, वे न्याय करता समय कणी रे लारे भेदभाव नहीं करता। और वणानो मानना हो कि राजा रो सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा री रक्षा करनी है।
1: बिल्कुल सा। आज रा समय में हर तरह वणारे समय पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, नोबल पुरस्कार अणि तरीका रा। और अणा ने जो नी वेता हा वे भी अणि वास्ते महाराणा रणजीत सिंह जो असा हा कि आधुनिक पुरस्कार नी मिल्यो, लेकिन वे वणा ने वो सम्मान मिल्यो जो कड़ी पुरस्कारों कम नहीं हो। वणा ने पूरा भारत में शेर ए पंजाब रे नामो सम्मान किदा लगा और वणा ने सम्मान मिल्यो। और इतिहास में वणा ने भारत तो सब महान शासका में गिनती ही। और आज भी वणारो नाम संग्रहालय, प्रतिमा और संस्थान मण्या तका है। और शेर ए पंजाब नामो जाण्या जावे है सा।
0: बिल्कुल साथ देखो, या तो कितनी आप जानकारी और बातचीत देखो और घड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवा रो अपना टीम वेरो तो आज्ञा दो नानू।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम में 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बज चुके हैं। आइए आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत।

जमीन आसमान, लीजिए सुनिए इस फिल्म से गीत, आर डी बर्मन के संगीत से सजा, आवाज लता मंगेशकर की है।

आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए अगला गीत जिसे हमने चुना है फिल्म शक्ति से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का।

कहते हैं कि नगमे हैं, शिकवे हैं, यादें हैं, बातें हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादों के पुलिंदे जब खुलते हैं तो एक, सिर्फ एक याद आपके दिल में नहीं आती, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई या उस जरिए से जुड़ी हुई हजारों यादें आपके दिल में बस जाती हैं। श्रोताओं जी, सुनिए अगला गीत जिसमें यादों के पुरिंदे को खत के जरिए भेजा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म है कन्यादान, मोहम्मद रफी।

नगमे हैं, शिकवे हैं, यादें हैं, बातें हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादों के पुलिंदे जब खुलते हैं तो एक, सिर्फ एक याद आपके दिल में नहीं आती, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई या उस जरिए से जुड़ी हुई हजारों यादें आपके दिल में बस जाती हैं। श्रोताओं जी, सुनिए अगला गीत जिसमें यादों के पुरिंदे को खत के जरिए भेजा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म है कन्यादान, मोहम्मद रफी की आवाज, संगीत शंकर जयकिशन का।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: समाधि फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज़ आशा भोसले की थी। और लीजिए सुनिए अगला गीत भूपेंद्र और रूना लैला के स्वरों में फिल्म घरोंदा से।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

चलते चलते शाम यूं गुजर जाती है, लेकिन तेरा ख्याल है कि पूरी शाम जी में रहता है और सोने नहीं देता। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया में कुछ संगीत के ऐसे नगमे जो दिल को भाते हैं, और ऐसा ही एक नगमा आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की स्वरों में। संगीत एक बार फिर आर डी बर्मन का है और फिल्म है घर।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, संगीत मदन मोहन का है और आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए अनपढ़ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समाचार संध्या, और रात्रि 9 होंगी अंग्रेजी समाचार News@9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में

0: विनायक नारायण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 9:15 हुए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गजलें।

0: आंसू ढल के।
1: छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है चक्कर के तू देख। जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत अदायगी अभी आपने सुनी, और एक बार फिर जगजीत सिंह की ही आवाज़।

कभी मन्नतें मांगी, कभी दुआएं पढ़ी, फिर इकरार तब हुआ जब खत तुम्हारा आया और इजहार हुआ। अगली आवाज, अगली गजल पंकज उदास की आवाज में।

0: पंकज उदास की गाई इस खूबसूरत गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका।
1: जीना विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुंचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे

0: बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत,
2: भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
3: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को भी लाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना

0: करना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई। तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंटवार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग

0: रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है। तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था। और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांव में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें।

0: ये बात जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9 महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स में काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों के

0: तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है
2: जी।
3: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट।

और ज्येष्ठ निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 10 बजने वाले हैं। अब हम जुड़ेंगे एक बार फिर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
2: मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में

0: एमए करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santoor. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santoor from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 11 बजने को हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को

0: सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केन्द्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defense Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defense Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th June.